0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে নবীন সাক্সেনা। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत के विनिर्माण

0: बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has called for WTO complaint approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. The group of 7 G7 nations have agreed to release 100 million barrels of oil over 4 months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. The decision came as diesel prices in the United States climbed to record levels, adding pressure on President Donald Trump and his administration ahead of November's midterm.

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट

देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पणखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

0: प्रधानमन्त्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मैं तब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एडवाइजर से और मेरे को इनसे कॉल करके मेरी हौसलाफजाई कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु, आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्वसनीय रूप से डिजाइन और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिल्वॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन समारोह में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती

सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने रोबोटिक सर्जरी समिति के अंतर्राष्ट्रीय

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नौवहन निगम से देश को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री सोनोवाल कल निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा में भारतीय नौवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाते हुए सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्ध पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि 90% से अधिक महिला श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू हो गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापानी एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला कुश्ती, हॉकी और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. We have a report.
2: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
1: Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that robotics is set to become an important tool across medical specialities covering diagnostics, treatment and therapy. Addressing the International Conference of the Society of Robotic Surgery, he said that robotics, artificial intelligence and nanoscience will create an ecosystem for precision and personalized healthcare. Dr. Singh said that the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology and robotic cardiology, just as AI is finding applications across different medical specialities. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान

0: पैसे लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
1: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3,00,000 लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा

0: समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
2: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
3: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीखकर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रूपए तक की इनकम कर ली।
2: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया

0: आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शैक्यों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mohor clinches gold in recurve event. Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And now the news in detail. India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns are addressed through WTO consistent measures, including anti-dumping and countervailing duties based on evidence and subject to judicial review. He emphasized that industrial capacity in itself is not the issue, while distortions can arise where geographical concentration of production is driven by hidden subsidies and support. We have a report.
3: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna

आकाशवाणी कोलकाता संचयिता, आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रसधारा, और मैं हूं पॉपी आपके साथ, हमारा और आपका साथ 10 बजे तक। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद अजीज़ के आवाज़ में एक खूबसूरत गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म मर्द से।

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला मर्द टांगे वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या

प्रयागराज का गीत और अनु मलिक का संगीत। आपने सुना ये गीत फिल्म मर्द से, और कोई खास तो वजह है कि आज मैंने ये गीत सुनाने का विचार किया है, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी आज कि कुछ खास पशु पक्षियों पर हम आपको गीत सुनाएं। आपको बता दें कि मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रसधारा। मैं हूं पॉपी, आपके साथ। सुनते रहिए, साथ रहिए हमारा ये कार्यक्रम 10 बजे तक।

दोस्तों, दो गीत मैंने सुनाए पशुओं के ऊपर और आज पशुओं के संरक्षण के ऊपर हम बात करेंगे। वैसे दोस्तों, कभी आप वैष्णव देवी गए हैं? वैष्णव देवी, केदारनाथ, मनाली, और काफ़ी लोग, हम में से काफ़ी लोग घोड़ों की सवारी की है। जी हाँ, कभी उस घोड़े की आंखों में देखा है? सुबह 4 बजे जब अंधेरा रहता है, 12 डिग्री ठंड, एक 10 साल का खच्चर, उसकी पीठ पर 90 किलो का आदमी और उसके ऊपर 20 किलो का बैग उस आदमी का। वो रोज 24 किलोमीटर चढ़ाई करता है और दिन में 3 चक्कर, यानी कि हो गए 72 किलोमीटर, बिना चप्पल के पथरीले सड़क, और अगर रुक गए तो डंडे पड़ने लगते हैं। और ऐसे में क्या होता है मालूम है? उसके मुंह से झाग निकल आता है और हम ऊपर जाकर क्या कहते हैं, जय माता दी, यात्रा सफल हो गई। क्या वाकई यात्रा सफल हो सकती है? ऐसे आपको बताना चाहेंगे कि साल 2023-24 में केदारनाथ यात्रा में सैकड़ों से ज्यादा घोड़े खच्चर मारे गए, थकान से, भूख से, पहाड़ से गिरकर। उनको खच्चर के नाम से बुलाकर हम भूल गए कि वो जीव है। उनके मालिक उन्हें इंजेक्शन दे देकर चलाते हैं, पेन किलर देकर चलाते हैं ताकि दर्द ना हो और वो चलते रहें। साइंटिफिकली एक खच्चर की जो क्षमता है वो 40 से 50 किलो की है, लेकिन उसके ऊपर लादा जाता है 100 से 120 केजी। सुबह 4 से रात 10 बजे तक खाना सिर्फ थोड़ा, आपने देखा होगा उनकी हड्डियों का बिल्कुल एक्सरे रिपोर्ट दिखता है अगर आप देखेंगे तो, थोड़ा खाना और भूसी और गंदा पानी, ठंड में बिना कंबल के खुला आसमान, गरम लोहे की नार ठोक कर, वो भी बिना एनेस्थीसिया, और फिर उसी ठोके हुए नार से, उस पैर से गरम सड़क पर चलना, कहाँ तक ठीक है? शायद मुझे तो नहीं लगता कि ये ठीक है। और हम इसके बाद कहते हैं अपनी यात्रा सफल करने के लिए हम जाते हैं।

बात कर रहे हैं आज पशुओं की। जी हाँ, पशुओं की और उनके संरक्षण की और हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, अगर देखा जाए कि आम तौर पे रास्ते के एक कुत्ते को, यानी कि मोहल्ले के एक कुत्ते को हम नाम रख देते हैं टॉमी, और बिना सैलरी के, बिना छुट्टी के टॉमी बेचारा पूरी रात मोहल्ले की चौकीदारी करता है। रात को 2 बजे या 3 बजे कोई चोर आए तो ये भौंकेंगे और सुबह आप इनको भगा देंगे। ये होती है हमारी लॉयल्टी आम तौर पर। बात करें अगर हमारी गाय माता की, तो नेशनल हाईवे पर घूमती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, और फिर हम कहते हैं अरे आजकल की जो गाय है ना, दूध ही देना बंद कर दी है। पहले के जो गाय होते थे कितने सारे दूध हमें मिलता था, लेकिन आजकल की गायें दूध देना ही बंद कर दी हैं। बंदर की अगर बात करें तो ये हनुमान जी के रिश्तेदार माने जाते हैं। आपका चश्मा, आपका समोसा सब लेकर जाएंगे और ऊपर से दांत भी दिखाएंगे। और तो और अगर कबूतरों की बात करें, हालांकि कबूतर से मैंने एक गीत आपको सुनाया है, मैंने प्यार किया, कबूतरों की बात करें तो दाना डालो तो आएंगे, और उसके बाद एक के बाद दो आएंगे, उसके बाद इनका पूरा परिवार आएगा, पूरा खानदान आएगा, पूरा रिश्तेदार आएगा, और फिर लेकिन ऐसी बातों से क्या मतलब जो आज मैं बातें कर रही हूँ? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है कि हमें पशुओं की संरक्षण करनी है। जी हाँ, अगर इन पशुओं की संरक्षण हम नहीं करते हैं तो जहाँ हम इस देश में जाने जाते हैं हमारे त्याग, हमारे सेवा के लिए, कहीं उस त्याग और सेवा में एक काला धब्बा तो नहीं लग जाएगा? हम टॉमी को काम में लगाते हैं, रात को मोहल्ले में वो पूरा चौकीदार करता है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? बस थोड़ी सी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको समय समय पर थोड़ा रोटी, थोड़ा खाना जो आपके घर में बनता है, शायद आपके घर का 2% भी नहीं होता होगा उसका खाना, और थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार दे दो, सब मिलकर वैक्सीनेशन करवा दो, और मोहल्ला भी सेफ, टॉमी भी खुश, आप भी खुश। अगर गाय

की बात करें तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कचरा सूखा कचरा सूखे में, गीला कचरा गीले में, कचरा डस्टबिन में डालें और गाय को हरा चारा ही खिलाएं। हाँ, हरा चारा जब हम बात करते हैं तो उसमें होती है कि घर की साग सब्जी जो हमारा जो बच जाता है, जो हम फेंकते हैं, उसका सेवन वो करें। बंदरों की अगर हम बात करें तो इन्हें तो गलती से भी छेड़िएगा मत। हाँ, अगर खाना देने का दिल करता है, भाई दे आर पुअर एनिमल्स, सामान्य जीव हैं। और कहा जाता है कि ईश्वर ने जितने भी जीव बनाए हैं उन सारे जीवों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को बुद्धि प्रदान की गई है तो वो है मनुष्य में। तो मनुष्य का ये नैतिक दायित्व है कि वो दूसरों की मदद करे, दूसरों को संभाले, दूसरे प्राणियों का संरक्षण करें। और हाँ, हमें से कई लोग हैं जो इन जीव जंतु को देखकर उन पर पत्थर मारते हैं, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन शायद ये बहुत गलत है। और बंदरों के साथ तो ऐसी हरकत कभी ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज वानर ही थे और उनका ब्रेन, जी हाँ, उनका दिमाग भी कुछ कम नहीं चलता। अगर आपने ऐसा किया तो बस अगले दिन समझ लीजिए पूरी सेना हाजिर आपके घर पर। तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पशुओं के संरक्षण पर। संरक्षण के ऊपर काफ़ी बातें करेंगे। और आइए 9:40 कार्यक्रम का अगला गीत पापुन की आवाज़ में।

9:44, आपको बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं पशु संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी के ऊपर। मीडिया वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा और मैं हूं पॉपी आपके साथ। और जब बात चल रही है पशु संरक्षण की, इसका मतलब ये नहीं कि आप जू बनाएं, इसका मतलब है कि आप खुद भी जिएं और पशुओं को भी अच्छी तरह से जीने दें। उसके लिए हमें करना क्या है? बहुत छोटी छोटी प्रयत्न, छोटी छोटी कोशिशों से हम इन जानवरों को, इन पशुओं को अपना प्यार दिखा सकते हैं। जान के रखिए कि एक छोटी सी बात, हमारे कल्चर में कहा जाता है कि जिस घर में कुत्ता खुश होता है उस घर में तरक्की होती है, समृद्धि होती है। और जिस देश में जानवर सुरक्षित हैं, समझो वो देश सबसे सबसे अच्छा देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां पशुओं को देवतुल्य माना गया है। गौ में तो 33 कोटि देवता, हाथी में गणेश, बंदर में हनुमान, नाग में शिव, ये सब हम मानते हैं। हमारे वेदों ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आज जब हम सुपर पावर बनने की रेस में हैं, तो क्या हम अपने इन साथियों को भूलते जा रहे हैं? पशु संरक्षण सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है भाई? है, अगर आप देखें तो पर्यावरण का जो संतुलन है ये पशु ही बनाते हैं। एक गिद्ध, आपने गिद्ध देखा होगा, इर्द गिर्द गिद्ध घूमते, एक गिद्ध हमारे लिए नेचुरल क्लीनर है, सफाई कर्मचारी है। वो गंदी सड़ी हुई चीजों का सेवन करके साफ सफाई करता है। एक सांप का कंट्रीब्यूशन, खेत के जितने भी चूहे हैं जो फसल खराब करते हैं उन फसलों को वो बचाता है उन चूहों का सेवन करके। ये एक कड़ी बनी हुई है और इस कड़ी को हम तोड़ नहीं सकते। हम बुद्धिमान प्राणी हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। ताकत का मतलब ये नहीं कि हम शोषण करें, ताकत का मतलब ये है कि हम संरक्षण करें, रक्षा करें। और तो और आपको बताना चाहेंगे कि इस पशुपालन से 8 करोड़ से भी ज्यादा परिवार चलते हैं। दूध, ऊन, चमड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। हिंदुस्तान में जानवरों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा कानून बना है। वो कानून क्या है हम बताएंगे, लेकिन आइए पहले एक और खूबसूरत गीत के साथ आपको रूबरू कराते हैं।

इन पशुओं का असर कितना ज्यादा हमारी जिंदगी में है, आप इस बात से सोच सकते हैं कि हमारे जो शायर कवि हैं उन्होंने भी हमारी जिंदगी में, हमारे गीतों में, संगीतों में इनको लिया है, इनको हिस्सा बनाया है। और बात कर रहे थे भारत में कानून की, तो आइए आपको बताएं कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जीवों पर, भारत में जीवों पर, पशुओं पर, जानवरों पर अपनी दया को दिखाए। कुछ ऐसे

लॉज हैं कि किसी भी जानवर को आप मार नहीं सकते, भूखा रख नहीं सकते, या किसी भी प्रकार का अगर तकलीफ देते हैं तो आपको ये इसे जुर्म माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए 5 साल तक जेल भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सन 1972 ये कहता है कि शेर, हाथी, गेंडे, मोर इनका शिकार करना मतलब सीधा अपने आप को षड्यंत्र के बीच डालना और इसके लिए बहुत बड़ी कानून है, बहुत सख्त कानून है और जिसके कारण आपको जेल भी हो सकती है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में शुरू हुआ, ये सरकार के बहुत स्पेशल, बहुत खास मिशंस हैं। आपको साथ में बताना चाहेंगे कि आवारा पशु का जो संकट है वो भी काफ़ी बड़ा है। 6 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ता, मतलब कुत्ते, 50 लाख से ज़्यादा आवारा गायें, नसबंदी की कमी और कचरे की वजह से इनके संख्या में इजाफा हो रहा है। जंगल कटे तो हाथी गांव में आ गए। हम कहते हैं अरे हाथी ने घर तोड़ दिया, उधर हाथी बेचारे कहता है यार तुमने हमारा जो घर तोड़ दिया तभी तो हम जंगल छोड़कर गांव में घुस रहे हैं। तो हमें इस पर भी अपने आप को काबू लाना पड़ेगा, जो हम जंगलों को काट काट कर सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद इसमें बहुत बड़ी खामी है। हर साल हजारों गायें प्लास्टिक खाकर मर जाती हैं। यमुना में फेंका गया, यमुना ही क्यों, बहुत सारे नदियों में जो हम कचड़े फेंकते हैं उससे वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट की जो भी प्रक्रिया है उस पर बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा दें। और बहुत खराब फीलिंग्स होती है जब हम ये जानते हैं कि आज भी हाथी दांत, बाघ की खाल, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके तस्करी आज भी चलती है। अगर आपको दिखे कहीं तो संग संग इसके बारे में आप कानूनी मदद लें या कानून को इत्तला करें कि ये काम गैर कानूनी है और आप ये नहीं कर सकते हैं, तब हम जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। फिलहाल एक खूबसूरत गीत के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, लेकिन हाँ हम आपको बताएं कि 10:02 पर आपके साथ हमारी मुलाकात होगी FM रेनबो पर। फिलहाल आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर कार्यक्रम रसधारा, और 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेज़ी में द न्यूज़। फिलहाल इसके साथ, इस गीत के साथ पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रॉयलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त

के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

0: भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has called for WTO complaint approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. We have a report.
2: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Saikia, Akashwani News,

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। पेशे खिदमत है रोज़ाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन में हाजिर है आपकी मेज़बान सादिया सदफ। तमाम सामेईन को सादिया का पुरखलूस आदाब। खलूस व उन्स की फैली है खुशबू, सजी है अंजुमन उर्दू ज़बां की। अंजुमन का आगाज़

आईना से आज का आईना वाइल्ड लाइफ वीक पर मुलगिर सतह पर आज 72वां वाइल्ड लाइफ हफ्ता मनाया जा रहा है। ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसका सरकारी थीम कनेक्टिंग हैबिटेट्स थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ है। जानवरों के तहफ़ के लिए माहौलियाती राहदारियों और मुनसलिक मनाजिर की अहमियत पर जोर देते हुए हैबिटेट्स को जोड़ना फ़रोग पजीर जंगली हयात के लिए लाजमी है और इसीलिए इसे थीम के तौर पर कबूल किया गया है। इसे मनाने का मकसद हयातियाती तनवों के तहफ़ के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना, बकाए बाहमी को फ़रोग देना और कम्यूनिटीज़ को कुदरती रहाइश गाहों की हिफाजत में मशगूल करना है। इस ज़िम्न में कौमी सतह पर चिड़ियाघर, पनागाहों और जंगलाती डिवीजनों ने खसूसी तालीमी और इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स का इरादा किया है। तो दोस्तों, ये था आईना और अब समाप्त कीजिए हफ्तावार शहरनामा। सामीन, गुज़िश्ता 28 सितंबर को रेबीज का आलमी दिन था, जिसका मकसद अवामी बेदारी थी ताकि रेबीज से बचाव के बारे में शोर उजागर किया जा सके और इस बीमारी के खात्मे में आलमी सतह पर पेशरफ्त को उजागर किया जा सके। दरअसल 28 सितंबर को फ्रांसीसी कीमियादान और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर की बरसी मनाई जाती है, जिसने रेबीज की पहली मौसर वैक्सीन तैयार की थी। इस मुनासबत से रेबीज के आलमी दिन का इंतखाब किया गया। ये दिन कम्युनिटीज़ को कुत्तों के काटने से रोकने, रेबीज की अलामत को पहचानने और नुमाइश के फौरन बाद जख्मों को सही तरीके से धोने के बारे में तालीम देता है। ये कुत्ते के बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्रामों पर जोर देता है, क्योंकि कुत्ते इंसानी रेबीज़ के 99% से ज़्यादा केसेस का ज़रिया हैं। मज़ीद, ये दिन एक सेहत के नुक्ता नज़र की हौसला अफजाई, ये इंसानी, हैवानी और माहौलियाती सेहत के शोबों को 2030 तक कुत्ते की सालसी रेबीज़ से सिफर इंसानी अमवात के आलमी हदफ के लिए मिलकर काम करने के लिए मुतहद करता है। गुज़िश्ता 28 सितंबर को मालूमात तक रसाई का आलमी दिन यानी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन था, जिसे आलमी सतह पर 28 से 30 सितंबर तक मुनक़िद होने वाले एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस के साथ मनाया गया। इसकी थीम डिजिटल दौर में मालूमात की सालमियत को बरकरार रखना, इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर से निपटने में मालूमात तक रसाई का किरदार थी। शफाफ अवामी रिकॉर्ड के जरिए गलत मालूमात का मुकाबला करना, डिजिटल और एआई दौर की मीडिया खानदगी को बढ़ाना और अवामी रसाई और बुनियादी आज़ादियों के हवाले से अक़वामे मुत्तहिदा की पायदार तरक्की के हदफ 16.10 को आगे बढ़ाना इसके मकसद में शामिल है। मज़ीद ये कि गुज़िश्ता 28 सितंबर को कौमी इनकलाबी शहीद आज़म भगत सिंह का 119वां यौम पैदाइश था। वो 28 सितंबर 1907 में पंजाब के ज़िला लायलपुर के गांव बंगा में पैदा हुए थे। भगत सिंह इनकलाबियों के ख़ानदान में पैदा हुए थे और 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें प्यार से भगन वाला कहा जाता था, यानी खुश नसीब। भगत सिंह ने नौजवानों को मुतहरिक करने के लिए नौजवान भारत सभा की मुश्तरक बुनियाद रखी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ 23 साल की कम उम्र में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उन्होंने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दी और तारीख के सफ़ात को रोशन कर दिया। इस अजीम मुजाहिद आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात के ज़रिए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। गुज़िश्ता 28 सितंबर को मशहूर गुलोकारा लता मंगेशकर का यौम पैदाइश भी था। वह 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई और 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी के खिताबात से मशहूर लता मंगेशकर ने 8 दहाइयों पर मुहित करियर का लुत्फ उठाया और 36 से ज़्यादा जबानों में 10,000 ट्रैक रिकॉर्ड किए। मौसीकी की दुनिया में उनकी खिदमत के सिले में उन्हें 2001 में हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें मौसीकी में उनकी यादगार शराकत के लिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिले। गुज़िश्ता 29 सितंबर को आलमी यौम कल्ब यानी वर्ल्ड हार्ट डे था, जिसके तहत दिल की बीमारियों के बारे में शोर उजागर किया गया और इस दिल की सेहतमंद ज़िंदगी को फ़रोग दिया गया जाने के सिलसिले में बातें की गईं। इसके मकसद और अहदाफ में लोगों को दिल की बीमारी के बारे में तालीम देना, जो दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है, शामिल है। सेहतमंद आदात की हौसला अफजाई करना, जैसे मुतवाजन खाना, बाकायदा वर्जिश और तंबाकू के इस्तेमाल से गुरेज वगैरह भी अवामी शोर उजागर करने के अहम ज़राए हैं। मज़ीद अफराद, कम्यूनिटीज़ और

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ। समाप्त करें अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की खूबसूरत आवाजों में फिल्म बहू बेगम से। नगमा निगार हैं साहिर, मौसीकार हैं रोशन। इस शेर के साथ के माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, अपनी मेजबान सादिया के साथ। समाप्त करें इन नगमों के बाद एक खूबसूरत गजल सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म गमन से। कलाम है शहरियार का, मौसीकार हैं जयदेव।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ। और अब समाप्त करें अगली पेशकश एक और दिलकश कलाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में।

मीडियम वेव 297.6 मीटर, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। समाप्त करें अगली पेशकश एक और गजल मेहदी हसन की आवाज़ में।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ। वक्त हो गया है आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश का। समाप्त करें आखिरी पेशकश किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बेमिसाल से। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, मौसीकार हैं आरडी बर्मन। सुनते रहिए इस नगमे को। इजाजत दें अपनी मेजबान सादिया सदफ को। आपसे फिर मुलाकात होगी, सुबह खैर। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम सयानी चटर्जी के साथ। सुबह खैर।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि और मैं हूं पॉपी आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुरभि को दो हिस्से में बांटा गया है, एक है चर्चा है, तो चर्चा है में आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में और पहल में नया सवेरा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी कोलकाता संचयिता।

दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि संस्कृति है, जहाँ शेर में दुर्गा, हाथी में गणेश और सांप में शिव बसते हैं। इसी संस्कृति को याद रखने के लिए हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और गांधी जी ने कहा था कि हर जीव पर दया करो। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत सन 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने की थी। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। तब से पिछले 69 सालों से ये परंपरा चल रही है कि आम लोगों में वन्य जीवों के प्रति प्रेम जागे। पहले हम सोचते थे कि जंगल के चारों तरफ बाउंड्री बना दो तो जानवर सुरक्षित है, लेकिन अब पता चला कि जानवर को एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाने के लिए रास्ता चाहिए और इसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अर्थात वन्य जीव गलियारा कहते हैं। जैसे हाथी को काजीरंगा से कार्बी पहाड़ियों तक अगर जाना है, बाघ को रणथंभौर से कूनो तक जाना है, और अगर बीच में हाईवे, खेत या फैक्ट्री बन गई हो तो वो कहाँ जाएंगे? वो गांव में तो घुसेंगे, और ऐसे में मानव के साथ वन्य जीवों का संघर्ष होना बिल्कुल लाजमी है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है और इस साल का लक्ष्य है गलियारे बचाओ, ताकि जानवर और इंसान दोनों साथ जी सके। वन्य जीव सप्ताह अगर हम देखें तो इसकी जरूरत क्यों है? दरअसल पर्यावरण को संतुलित रखना। गिद्ध हमारा सफाई कर्मी है, वहीं सांप चूहों को खाकर फसल बचाता है, मधुमक्खियां परागण करके अनाज देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जीवों पर दया करे। भविष्य की जो सुरक्षा है वो भी इस वन्य जीव के द्वारा ही संभव है, और जंगल रहेगा तो पानी रहेगा, और पानी रहेगा तो मानव जीवन रहेगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे। अब जानना चाहते होंगे आप कि इस वन्य जीव सप्ताह में होता क्या है, तो

आपको बताएं कि देश भर में इस हफ्ते स्कूल कॉलेजों में निबंध लिखवाया जाता है, चित्रकला प्रदर्शनी की जाती है, क्विज, फोटोग्राफी वगैरह वगैरह। चिड़ियाघरों में यानी कि जू में बर्ड वॉक, नेचर ट्रेल, जागरूकता शिविर, ये सब किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव-गांव में वन विभाग द्वारा लोगों को समझाया जाता है कि जंगली जानवर दिखे तो क्या क्या करना चाहिए। इस साल मेघालय के तुरा में 350 लोगों ने वन्य जीव जागरूकता पर दौड़ लगाई। अब बात आती है कि हम आम लोग हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारी कोई जिम्मेदारी है तो वो किस किस प्रकार से होनी चाहिए, तो हम ऐसे में ये कर सकते हैं कि जंगल में जाएं। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो भ्रमण करना चाहते हैं जंगलों में, जिन्हें जंगल की खूबसूरती बहुत ही आकृष्ट करती है और उनका झुकाव रहता है कि वो जंगल में सैर सपाटे के लिए जाएं। तो उन्हें हम ये कहना चाहते हैं कि जंगल में अवश्य जाएं, जंगल का जो लुत्फ है वो ज़रूर उठाएं, लेकिन वहाँ जाकर कचरा को अपने साथ वापस लेकर आएं, ये नहीं कि वहीं पर फेंक दिया। और ख़ास करके जब आप जंगलों के बीच से गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाएं, ख़ास करके जंगल वाले रास्तों पर, क्योंकि ये जो जंगली जानवर, जो वन्य जीव हैं, वह गाड़ी की आवाज़ से, वाहन की आवाज़ से परिचित नहीं होते हैं, तो उन्हें एक खौफ होता है, एक डर पनपता है उनके हृदय में। कोई भी घायल या तस्करी होता देख अगर आपको कहीं दिखे तो संग संग वन विभाग को इत्तला करें। जी हाँ, वन विभाग का जो नंबर है, जो हेल्पलाइन है, वो है 1926-1926-1926, ये भी याद करके रख सकते हैं। और हमेशा अपने बच्चों को जानवरों के नाम सिखाएं, और ताकि आगे चलकर उन्हें पता चलेगा कि वन्य प्राणी कौन है, किस तरह से उन्हें बचा जाए, उन्हें भी आपकी शिक्षा की ज़रूरत है। वन्य जीव सप्ताह एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि हमारा जो संतुलन है वो बना रहे। याद रखिए कि हम जंगल के मालिक नहीं हैं, हम जंगल के मेहमान हैं, और एक अच्छे मेहमान की तरह हमें न सिर्फ रहना है बल्कि अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना है।

मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना फिल्म हाथी मेरे साथी से ये गीत। और अब वक्त हो चला है पहल का। आपको बताएं कि पहल एक भारत सरकार की योजना है और ये केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य है गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को फ्री में, मुफ्त में कोचिंग देना ताकि वो बड़े एग्जाम्स निकाल सकें। 6 धर्मों के लिए ये योजना है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स IIT, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन NEET, CAT, CLAT, मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सरकारी नौकरी UPSC, SSC, स्टेट PSC, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी नौकरी, बैंक, रेलवे, पुलिस, PSU, प्राइवेट नौकरी, IT, BPO, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन आदि, इन सब के लिए एग्जाम होता है और इसके लिए ये योजना बनाई गई है। पूरी कोचिंग फ्री और सरकार खुद NGO अथवा कोचिंग सेंटर को भुगतान करती है। बाहर रहने वाले छात्रों को 3,000 रुपया प्रति माह और लोकल छात्रों को 1,500 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड भी मिलता है। 30% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। कौन ले सकता है? जी हाँ, इस योजना का फायदा परिवार की सालाना आय 6 लाख से भी कम होनी चाहिए और 6 अल्पसंख्यक समुदायों में से होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कई हजार छात्र और छात्राओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। तो ये थी नया सवेरा नामक योजना के बारे में कुछ जानकारी। फिलहाल आपको बताएं कि हमारे स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 12:19 और बस कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे पाश्चात्य कार्यक्रम शानी चैटर्जी के साथ।

0: 155 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमी। वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज डेवलप्ड इकोनॉमी इफ इट इज एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। दैट इज वेयर द रियल डेवलपमेंट बेनिफिट शुड रीच द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Vice President CP Radhakrishnan has emphasized that economic resilience cannot be separated from

0: भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में US इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी था, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या GDP देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर की। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर GDP का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों

0: को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5,00,000 रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPC में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: फॉस्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, from there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए।

0: जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হলো দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলো হার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় 4:59:50। এখন খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं हॉकी में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली है। पदक तालिका में भारत 20 स्वर्ण 26 रजत और 37 कांस्य सहित 83 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है। ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी

0: तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 37वें ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. Details from our correspondent.
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah announced 101 crore rupees for cow shelters at the Sammelan, attended by around 35,000 Gopalaks from 11 districts. He also virtually performed the foundation stone ceremony for a dairy plant to be built in Ujjain at a cost of 255 crore rupees. He said that a central laboratory has been set up in Bhopal at a cost of 12 crore rupees and a mini dairy plant will be built in Shivpuri. Before the Gopalak Sammelan, the Union Minister also inaugurated an exhibition by the Madhya Pradesh Police on the new criminal laws at the Bhel Dashara Maidan. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Home Minister Amit Shah said agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Mr. Shah added that from 2019 till August this year, a total of 288 fugitives from 36 countries have been brought back to India. Delhi Police has said the Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in New Delhi district to ensure public safety, public order and smooth traffic movement. In a public notice, DCP New Delhi said unauthorized gatherings, public speeches, shouting of slogans, processions, demonstrations, dharnas and other specified activities are prohibited. It also said no permission has been granted for any protest scheduled for today, nor has any prior intimation regarding any such protest been received by New Delhi District Police. Delhi Police has requested citizens to strictly comply with the order and cooperate with them.

শুনছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মঞ্জু মিত্র।

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 5:21:06 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। उर्वशी के आज कार्यक्रम मोहिनी में आज हम बातें करेंगे आशा फारिक के बारे में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका।

आइए सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लव इन टोक्यो से गीत। गायक गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

दोस्तों, आशा पारेख हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध, लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने सुंदर अभिनय, नृत्यकला, आकर्षक व्यक्तित्व और मेहनत के बल पर भारतीय फिल्म जगत में एक विशेष स्थान बनाया। लगभग 4 दशकों तक फिल्मों से जुड़ी रहकर उन्होंने अनेक यादगार भूमिकाएं निभाईं। उनकी फिल्मों और अभिनय ने कई पीढ़ियों के दर्शकों को प्रभावित किया। आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के भावनगर में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि नृत्य और कला के क्षेत्र में थी। उन्होंने प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बंसीलाल भारती से शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। नृत्य के प्रति उनके लगन और प्रतिभा के कारण उन्हें कम उम्र में ही मंच पर प्रस्तुति देने के अवसर मिलने लगे। उनकी प्रतिभा को देखकर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल राय ने उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्म में काम करने का अवसर दिया। इस प्रकार बहुत कम उम्र में ही उनका संबंध भारतीय फिल्म जगत से जुड़ गया। बाद में आशा पारेख ने फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म दिल दे के देखो उनके कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की सफलता के बाद वे दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। आइए सुनते हैं उसी फिल्म दिल दे के देखो से एक गीत।

दोस्तों प्रसिद्ध फिल्म दिल देखे देखो के बाद उनके कैरियर की के कैरियर में एक नया मुकाम बदल गया। इस फिल्म की सफलता के बाद वो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। आइए सुनते हैं उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक, जब प्यार किसी से होता है, से एक नगमा।

दोस्तों, वैसे तो आशा फारक ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उनकी प्रमुख फिल्मों में जब प्यार किसी से होता है, लव इन टोक्यो, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, कटी पतंग, कारवा, आया सावन झूमके और उपकार जैसी फिल्में ज़्यादा पॉपुलर हुई। आइए सुनते हैं मेरे सनम फिल्म से एक गीत।

आशा परे की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में कटी पतंग का विशेष स्थान है। इस फिल्म में उन्होंने एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनकी फिल्मों में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक विषय भी देखने को मिलते थे। वे रोमांटिक, भावनात्मक और हास्य भूमिकाओं के साथ साथ नृत्य प्रधान भूमिकाएं भी बहुत सहजता से निभाती थी। आइए सुनते हैं कटी पतंग से एक नगमा।

भारतीय सिनेमा में आशा पारेख के लंबे और महत्वपूर्ण योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, जो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान उनके लंबे फिल्मी कैरियर और भारतीय सिनेमा उनके योगदान को महत्वपूर्ण प्रमाण है। आशा पारेख का व्यक्तित्व नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन को महत्व दिया। बदलते समय और फिल्म उद्योग में आए अनेक परिवर्तनों के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। उनकी फिल्मों के गीत, अभिनय और नृत्य आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय है। आइए उनकी फिल्म कारवां का ये गीत, और फिलहाल इस गीत के साथ ही आपके दोस्त रोशन मुराका को उर्वशी समाप्त करने की आज्ञा दें। फिर मिलूंगा। नमस्कार। सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: You are tuned to the Shanche, the channel of Akashvani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters, that is on 1008 kilohertz medium wave. Time coming up to 1800 hours. We shall now join our studios in Delhi for the news.
1: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath, main Vishal Sharma. जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है। ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सर्वकारः गोपालन आधारितं सम्पूर्ण पारिस्थितिक तन्त्रं विकसयन् अस्ति, येन ग्रामीण अर्थव्यवस्थायै प्रोत्साहनं लभते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मासिकः आकाशवाणी कार्यक्रमः मन की बात अद्य 12 वर्षाणि पूरितानि। आरक्षिदलेन सूचितं यत् सार्वजनिक सुरक्षां विधिं व्यवस्थां यातायात संचारं सुनिश्चेतुं नवदिल्ली मण्डले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2000 360-100 भागः प्रभाविभूतः। आन्ध्रप्रदेशे सत्यावेडु मण्डलस्य श्री सिटी इत्यत्र एकेन औद्योगिक वाष्पयन्त्र विस्फोटेन 4 कर्मकराः मृताः, एकश्च गंभीररूपेण व्रणितः। अपि च एशियाई क्रीडायां जापानदेशे भारतेन अद्य 5 स्वर्णपदकानि 2 रजतपदके च विजिते। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासनं गोपालनस्य विषये सम्पूर्णं तन्त्रं विकसितुं प्रयतते। गोमयात् जैव गैस जैविक खाद निर्माणात् प्रारभ्य दुग्धजन्य पदार्थानां प्रसंस्करणं तथा च तेषां विपणस्य व्यवस्था अपि अस्मिन्नेव तन्त्रे अन्तर्भवति। एतेन ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाः विकासे नूतनं प्रोत्साहनं प्रारप्स्यते। अद्य भोपालनगरे आयोजिते राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलने भाषमाणः अमित शाहः अवदत् यत् सहकारिता मन्त्रालयस्य स्थापनया पशुपालकाः सर्वाधिकं लाभं प्राप्स्यन्ति।
1: हमने श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत की है। इसमें हम नई 75,000 सहकारी डेरिया गाँव में बनाएंगे और 46,000 डेरियों को मजबूत करेंगे। 75,000 नई डेरिया बनाने में सबसे ज्यादा डेरी मेरे मध्य प्रदेश में बनने वाली है।
0: आपराधिक न्याय व्यवस्थायाः परिष्कार विषये अमित शाहः भणितवान् यत् भारतीय न्याय संहितायाः पूर्णरूपेण कार्यान्वयने सति प्रथम सूचना प्रतिवेदनस्य पञ्जीकरणात् आरभ्य सर्वोच्च न्यायालय पर्यन्तं प्रकरणानां निस्तारणं 3 वर्षाभ्यन्तरे कर्तुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मासिक आकाशवाणी कार्यक्रमः मन की बात इति कार्यक्रमः अद्य 12 वर्षाणि प्रपूरितवान्। अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमं प्रसारणं 14-2000 वर्षे विजयदशम्याः अवसरे प्रसारितः अभवत्। साम्प्रतं यावत् मन की बात कार्यक्रमस्य 38-100 संस्करणानि प्रसारितानि। विगतेषु 12 वर्षेषु मन की बात कार्यक्रममाध्यमेन समग्रदेशे जायमानं सकारात्मकं परिवर्तनं प्रकाशयितुं भारतस्य विकासयात्रायां भारतीय नागरिकाणां सक्रियांशग्रहणं प्रोत्साहयितुं च एकं विशिष्टं मञ्चं प्रदत्तवान्। अनेन मासिक कार्यक्रमेण प्रधानमन्त्री देशस्य तेषां जनानां प्रेरणादायीः कथाः विनिमयं करोति, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, नव

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय नागरिकों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण

0: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुविमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम को दिशा दी है और जन सेवा से देश सेवा के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को बल और गति प्रदान की है। आज जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में हमारा विषय है जुड़ता भारत, सीमाओं से शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे विविध और विस्तृत देश को आपस में जोड़ने, दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने और देश के हर क्षेत्र, हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए मूलभूत ढांचे के विकास में हुई तेज प्रगति के लिए पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल चिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: नमस्कार।
1: आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं पीएम गति शक्ति पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: सड़क, रेल, बंदरगाह या हवाई अड्डा अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना अलग अलग और आपसी समन्वय के बिना बनाई जाए तो परियोजनाओं के बीच तालमेल की कमी और कनेक्टिविटी में अंतर जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई। इसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करना और सड़क, रेल, बंदरगाह, जल मार्ग, बिजली, दूर संचार तथा अन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। पीएम गति शक्ति के तहत जियो स्पेशल डेटा, जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को किसी परियोजना की योजना बनाते समय मौजूदा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और संभावित बाधाओं की बेहतर जानकारी मिलती है। अगस्त 2026 तक 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका था और 3291 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है। इसका एक अहम हिस्सा है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी NPG या केंद्र सरकार की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है ताकि योजना के स्तर पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, विभिन्न परियोजनाओं के बीच तालमेल और डेटा आधारित निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। रेलवे में भी पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों का इस्तेमाल परियोजना नियोजन में किया जा रहा है। मार्च 2026 तक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे की 300 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिनकी कुल लंबाई लगभग 13,808 किलोमीटर थी। इनमें 51 नई रेल लाइंस, 17 गेज कन्वर्जन और 232 डबलिंग परियोजनाएं शामिल थी। इस तरह पीएम गति शक्ति का मूल विचार है अलग अलग परियोजनाओं को अलग अलग देखने के बजाय पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को एक साथ देखकर योजना बनाना।
1: ये कहें कि प्रेरणात्मक अवसर है और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का जिस तरह से वहां पर समृद्धि आई वो सबके सामने सर्वविदित है और उसी लय में जिस तरह से उन्होंने मूलभूत ढांचे के विकास को हमारे देश में गति दी है पिछले 12 वर्षों में, उसको आप कैसे देखते हैं, आप कैसे आंकते हैं सुविमल जी?
2: आपके सारे श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ये सार्वजनिक जीवन में 25 साल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारे देश को जोड़ने का जो प्रयास किया हुआ है और विशेषकर मैं समझता हूँ कि उत्तर पूर्व भारत में जो बदलाव आया है पिछले 12 साल में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर पूर्व में एक हताश होते थे कि हम जो मेन स्ट्रीम शब्द यूज होता है इस्तेमाल जो होता है उसमें वो जुड़े नहीं है, वो किसी तरीका से इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो प्रयास रहे सारे उत्तर पूर्व में सड़क से जो

0: बनाना, हवाई अड्डो नया बनाना, रेलवे को आगे ले जाना, कितने सारे राज्यों में रेलवे नेटवर्क के ये कई सालों में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंक्लूसिव अप्रोच ऑफ गवर्नेंस होता है, इसका बड़ा प्रतीक है और प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल में यह दर्शाता है कि लोगों को जोड़ने के लिए आज जो हम बोलते हैं कि कनेक्टिविटी का महत्व बड़ा भूमिका होता है, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से 2014 में अगर आप चाहते हैं तो देखते थे कि क्वालिटी जो बैंडविड्थ का भी नॉर्थ ईस्ट में मिलता था, आज हर जगह अरुणाचल जाइए या त्रिपुरा जाइए, मिजोरम जाइए, कहीं भी जाइए आप कर सकते हैं। मैंने तो एक बार बजट का आधा घंटा पूरा डिबेट पहाड़ के ऊपर बैठ के नेटवर्क से यूज किया। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व भारत में बहुत सारे बदलाव लाए और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कामयाबी रहा उत्तर पूर्व को कम समय में जोड़ने के लिए।
1: अनिल जी आपके पास आते हैं, जैसा सुबिमल जी ने कहा कि कनेक्टिविटी को बहुत बल दिया है प्रेजेंट सरकार ने, और खासकर ऐसे एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो पहले मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े माने जाते थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया है। अगर हम जो पैन इंडिया जो स्कीम लाई गई कनेक्टिविटी के लिए, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम रहा है सरकार का, जिसमें इतने सारे विभाग, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसका परम उद्देश्य आप क्या मानते हैं, इसको कितना क्रांतिकारी मानते हैं?
2: सबसे पहले मेरा श्रोतागण को नमस्कार। और जहां तक पीएम गति शक्ति का जो प्रोजेक्ट पिछले 5-4 साल से शुरू हुआ है, तो इसमें देखा है कि एक क्रांति है। इसमें क्या है कि अभी तक सब अलग अलग साइलोज में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, और हमारे देश में हाईवेज हमने बनाए हैं और अच्छे हाईवे बनाए हैं, लेकिन अगर हम उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो भी हमारी एफिशिएंसी उसकी नहीं मिलेगी। अब हमारा देश का जो अगर देखा जाएगा, अब तो नहीं रहा, पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में होता था और वो 14% से के अबव था, लेकिन आज वो घटकर जो हर साल 2% से ज्यादा घट रहा है, इससे और भी ज्यादा घटेगा। जो इसका टारगेट है वो 6% तक लाना है, तो 6% तक लाने के लिए हमारे को हाईवेज जो थे वो स्टैटिक थे, अब वो डायनेमिक बने। डायनेमिक में का मतलब हुआ है कि उसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का इंटीग्रेशन किया, यानी कि अगर हमारी एक वायबिलिटी, सपोज हमारे को 2000 किलोमीटर जाना है या 1000 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम अलग अलग ट्रक लोड को लेके जाएंगे, अभी भी हमारा जो ट्रक का लोड है वो 80% ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देश में है, लेकिन जिस टाइम ये मल्टी मॉडलर हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जो 20% जो गुड्स का है तो वो शेयर बढ़कर 40% हो जाए, और 40% होते ही हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हो सकता है अभी 1 या 2 साल में हम 9% से कम भी ले आएंगे। और इसमें हमारे को जो भी उसमें हाईवेज की एमिनिटीज बनाना, इंटरचेंज पॉइंट बनाना है, हमारे को उसकी कनेक्टिविटी के साथ में जीआईएस की जरूरत है, हमारे को टेलीकम्युनिकेशन की जरूरत है, और जो हमारे को एक ड्राइवर्स का जैसे पूल की जरूरत है, और लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो इस सबका इंटीग्रेटेड हाईवेज की एमिनिटीज और फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये पूरे देश में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में हमारा देश, मैं आपको आज इस चैनल के थ्रू एक उम्मीद कर सकता हूं, और उम्मीद के साथ में मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम को जो पीएम गति शक्ति है, वर्ल्ड लर्न करेगा, सीखेगा।
1: सुबिमल जी आप क्या कहना चाहेंगे, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है, जिसमें हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको, इनलैंड वाटरवेज, सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया है, और ताकि बिल्कुल निर्बाध कनेक्टिविटी हो लोगों के लिए, गुड्स के लिए, ये किस तरह से आपको ये अप्रोच जरूरी लगता है अभी की जरूरतों के लिए, और हमारे इकोनॉमी के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है?
0: सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रयास रहे और अभी अनिल साहब ने भी ये बताया कि एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके जितने क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी उनको जोड़ा जा रहा है, और किस तरीके से हम ये जो नेटवर्क है इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको किस तरीके से संतुलित रूप से अपने जो रिसोर्सेस भी रहते हैं उसको भी हम उसी हिसाब से खर्च करें। तो हम अगर देखें तो इससे समय भी कम लगेगा प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा भी कम लगेगा। तो तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज भी जिस मात्रा में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे देश में ली है, अगर आप देखें गतिशक्ति पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम में करीब 400 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया गया था और करीब 19 लाख करोड़ का जो प्रावधान था उनके लिए, उसमें से करीब 250 और

0: ऑलरेडी सैंक्शनड है और 200 इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब एक कॉमन अप्रोच आप लेते हैं और जहां आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये देश के लिए बहुत फायदा होता है। और यही प्रयास से आज जब टेक्नोलॉजी हर तरीका हर क्षेत्र में मिल रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी, कनेक्टिविटी में भी, लास्ट माइल में भी, और जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है कनेक्टिविटी का, तो इस सारे जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कामयाबी है।
1: एक और एस्पेक्ट है जो हमने इन 12 वर्षों में देखा है कि बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टैब्लिश हुए हैं और बहुत दुर्गम जगहों पर इस्टैब्लिश हुए हैं। जो एक प्राइम एग्जांपल है अटल टनल, अटल टनल को अनिल जी अगर हम आपके पास आए, किस तरह से आप देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? ये पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल है 10,000 फीट से ऊपर, और जिस तरह का ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
2: मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम चाहे वो हिमाचल से जाना होता था लद्दाख को, और केलोंग जैसे हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट इसके बाद जो अटल टनल के बाद शुरू होता है, आज से करीबन 35-40 साल पहले सर्विस इंजीनियर था हिमाचल प्रदेश में, और मुझे पता था कि मनाली से केलोंग जाने में पूरा एक दिन लगता था, और एक दिन लगने की वजह से वहाँ का जो सब्जियाँ थी, वहाँ का जो और रॉ मटेरियल जो सप्लाईज होनी होती थी, तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती थी और उसमें लैंडस्लाइड होता था। और जो अब जब से ये सोलंग नाला से हमारी कनेक्टिविटी बनी है, तो आज 3 घंटे में पहुँचते हैं, यानी कि जो 12 घंटे का जो ट्रेवल था वो 9 घंटे हमारे बच गए, और कनेक्टिविटी इतनी फास्ट हो गई कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इतना कम हुआ। और फिर क्या था कि आप मनाली के बाद आगे कोई टूरिज्म नहीं था, आज अटल टनल ने एक ऐसा टूरिज्म का रास्ता खोला है कि जो लद्दाख, जो ऐसा लगता था कि आप बाय रोड पता नहीं कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, सेफ पहुंचेंगे या नहीं, और आज लद्दाख की कनेक्टिविटी हमारी इतनी आसान हो गई है कि कुछ लगता ही नहीं है कितनी जल्दी वहां पहुंच गए हैं। और डेवलपमेंट उस एरिया का, केलोंग जो बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र था, आज वहां पर वी आर फाइंडिंग बेटर होटल देन मनाली। तो ये जो डेवलपमेंट आ रहा है,
1: 6 महीने के लिए बंद हो जाता था रोहतांग पास, उसको ओवरकम किया है और कनेक्टिविटी निर्बाध बनी।
2: यस, अब रोहतांग पास तो बाईपास हो चुका है, तो नीचे से टनल जा रही है, अब जिसको रोहतांग जाना है जाए, अदरवाइज पहले तो इट वाज फोर्सिबली गोइंग ओवर देयर, तो वो सारी चीजें बंद है।
1: तो सुबिमल जी, सनी लाली, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सेला टनल जो 2024 में शुरू हुई, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं वहाँ के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए और वहाँ की इकोनॉमी के लिए और वहाँ के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेला टनल पृथ्वी की सबसे लंबी बाईलैंड टनल है, और ये ऑल वेदर रोड है तवांग, तो हमारा तवांग के साथ जो कनेक्टिविटी है अगर सारे सीजन्स में अवेलेबल है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात ये है कि एक अरुणाचल में ये दो जो ट्विन टनल्स है, ये सेला टनल एक एक किलोमीटर की है और एक 1.5 किलोमीटर की करीब, इससे थोड़ा ज्यादा है, 13,000 फीट ऑल्टीट्यूड में, इस तरीके का कैपेबिलिटी जो आज हमारे पास है और ऑल वेदर रोड बनाने का, तो अरुणाचल का कनेक्टिविटी, अरुणाचल का सिक्योरिटी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा महत्व है। और आज साल भर लोग उससे आगे जा रहे हैं, तवांग का एक टूरिस्ट वैल्यू भी है और सिक्योरिटी वैल्यू भी है, तो ये दोनों जो टूरिस्ट का इनफ्लो, हालांकि वेदर के हिसाब से कुछ सीजन्स होते हैं टूरिस्ट के, लेकिन साल भर में लोग का आना जाना है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा कामयाबी है, क्योंकि इससे और कई सारे उस तरफ और कनेक्टिविटी के लिए छोटे छोटे फीडर रोड्स ये जितने हो रहे वो भी एक्टिव होते जा रहे, तो अरुणाचल के और बॉर्डर कनेक्टिविटी विशेषकर बहुत आगे बढ़ रहा है इससे।
1: इसके अलावा अभी आप जो थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, उसमें जिस तरह से पीएम डिवाइन जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स आए हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने 3,746 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, जिसमें से 2,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये पूरा जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इनलैंड वाटरवेज बढ़े हैं, इससे आपको लगता है कि अब नॉर्थ ईस्ट न सिर्फ कहें कि मेनस्ट्रीम से जुड़ गया, बल्कि एक ग्रोथ इंजन बनने का उसमें पोटेंशियल है पूरे भारत के लिए?
0: बिल्कुल बने रहा है, आपने डोनर मिनिस्ट्री का जिक्र किया, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के अलावा भी एक प्रावधान है कि

0: केंद्रीय सरकार की 54 मिनिस्ट्री की मिनिमम 10% एक्सपेंडिचर इनको नॉर्थ ईस्ट में करना होता है, और ये जो आपकी फंडिंग इनकी तरफ से गए तो हर क्षेत्र में हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हुए। दूसरी बात आते है कि ये जितने पैसा देते हैं तो उसका जो एक अकाउंटेबिलिटी होता है वो आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद ये एक जो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है उसका जो अकाउंटेबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है तो आगे का हिस्सा भी नहीं जाता है। तो डोनर मिनिस्ट्री का जो अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी कुछ कर रहा है, या निरामेक जैसा संस्थान जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास रहे कि एक्सपेंशन के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी लाए तो हमारा जो रिसोर्स स्पेंडिंग है नॉर्थ ईस्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात है कि सड़क का जो निर्माण हुआ है अभी, या रेल का वहां जो निर्माण हुआ है, इस साल की मैं बता सकता हूं कि अभी 96% रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट में हो चुके हैं। जब 2014 में सरकार आए थे प्रधानमंत्री की, तब नॉर्थ ईस्ट में जो रेलवेज थे, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेन ब्रॉडगेज कन्वर्शन काम चल रहे थे, एक लमडिंग सिलचर का एक 196 किलोमीटर जैसे, वो 16 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी आने के साथ साथ एक साल में उसको कंप्लीट करके 2016 से वहां से ट्रेन जाता है। उस कनेक्टिविटी के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारत की रेलवे नेटवर्क में जुड़ गए। दूसरी बात, अगर आप हाईवे की वो ले तो वहाँ सिर्फ 91,000 किलोमीटर से 1,46,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन हुई, यानी कि 61% ग्रोथ रहे है इन कई सालों में। और सड़क की क्वालिटी भी बहुत अच्छा, मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत घूमते रहता हूँ तो मैं कुछ कुछ सड़क में जब जाते है लगते है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाफलोंग सिलचर जो सिर्फ 100 किलोमीटर की रोड है, आज पिछले 20 साल से अब 6 घंटा से कम में उस से जा नहीं सकते। कुछ स्ट्रेचेस ऐसे खराब थे, पिछले 2 महीना से आप उस स्ट्रेच को 1.5 घंटा में क्रॉस कर रहे, तो कितना फर्क पड़ रहा है
1: आम जनता के लिए, व्यापारियों के लिए, फार्मर्स के लिए, इसीलिए टूरिज्म के लिए,
0: बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स नॉर्थ ईस्ट में निकल के आ रहे हैं इसी की कनेक्टिविटी करके, क्योंकि वो गाँव से हाईवे तक आप आ रहा है और इसके बाद आगे मूवमेंट कर रहा है और आगे अपना प्रोड्यूस कहीं बेच के या कहीं जमा देके अगर वापस फिर सेम डे में जा सकता है, तो उससे मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन की तरह होता है, मोटिवेशन। बहुत सारे नए फार्मिंग एक्टिविटीज शुरू हुए हैं, यू नो, बिटलनाट के लोकल फार्मिंग, बंबू की लॉट ऑफ नए एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं। तो
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि जन सेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है जुड़ता भारत सीमाओं से शहर तक। दिल्ली के पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल शिकारा और नॉर्थ ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। और अब अनिल जी, जैसा भी सुविमल जी जिक्र कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक किया है इस सरकार ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो शुरू हो गए थे लेकिन वो लंबित थे। इवन अटल टनल की जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पहले उसका 300 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2040 तक जाकर वो समाप्त होती, और अब इन्होंने 1400 मीटर्स पर ईयर के गति से उसको बनाकर 2020 में जो कंप्लीट किया। आपको लगता है कि ये फास्ट ट्रैकिंग एंड टाइमली डिलीवरी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है सरकार का?
2: जी, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो पहले प्रोजेक्ट तो ये पहले का ही था
1: जी,
2: मुझे लग रहा है कि ये 2005 या 2006 से ये शुरू हो चुका था, उससे भी पल के पहले। तो उस टाइम में एक जो एक मोटिवेशन, एक ड्राइव, जो एक एंथुसियाज्म हमारे जो वर्कफोर्स में होने की जरूरत थी वो नहीं था। अभी आपने हाफलोंग की बात की, जैसे नॉर्थ ईस्ट में गया तो मुझे बताया गया कि आप उस स्ट्रेच से ना जाएं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इस ये वजह थी। और इसी तरह से जो और दूसरे हमारे प्रोजेक्ट से, जैसे ये बोगीबिल ब्रिज बना, अब हमारे जो प्रोजेक्ट में गति जो आ रही है वो एक उस पावर के साथ में आ रही है कि सरकार की एक बैकिंग है, सरकार का एक मोटिवेशन है। वो जो मोटिवेशन है वो हमारे प्रोजेक्ट को बिफोर शेड्यूल लेके आ रहा है और हम वी आर क्रिएटिंग वंडर्स। तो ये सरकार का एक फर्क आया है और हमें देखने का महसूस होता है, क्योंकि मेरा जो पिछले 40 साल से ज्यादा मैं सरकार में काम करता रहा था और जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट, चाहे वो मैं दिल्ली सरकार से और जो भारत सरकार के दूसरे प्रोजेक्ट में था, खास करके नॉर्थ ईस्ट में।

0: में पहले से ही एसोसिएटेड था। अब एक जैसे एक हमारे सिलचर में एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि सुनील साहब ने बताया कि वहाँ के लोगों को एक नया, जो चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी बन के आ रहे हैं, तो उसके साथ में एक हमारा वहाँ पर सिलचर में एक प्रोजेक्ट जो था वो इट वॉज डेड प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट अभी पिछले 3 साल से आईकैट ने सिलचर में लिया है, एंड वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ ड्राइवर्स ओवर देयर, वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री ऑफ टेक्नीशियंस सो दैट अवर एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड। तो ये जो एक फास्ट ट्रैक पर एक चेंज ओवर आया है, तो और वो सिलचर जो है इट विल ऑल्सो टेक केयर फॉर मिजोरम, इवन मणिपुर, असम के साथ में मेघालय, तो ये सबको मिला के वो जो एक हब बनेगा, तो वहां पर हम एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड जो विजन असम सरकार का और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि वहां का जो ड्राइवर्स है नॉट ओनली टू सर्व द कंट्री बट अब्रॉड ऑल्सो, तो ये वाले सारे चीजें जो एक चेंज पूरे एंथुसियाज्म पूरे लोगों में आया है, तो इट इज वंडरफुल, अनइमेजिनेबल।
1: जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि और इस जोश की वजह से हम रेलवेज में भी देख रहे हैं कि ट्रैक रिन्यूअल और स्पीड एनहांसमेंट के लिए जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उसमें गति बहुत है। वंदे भारत ट्रेन्स ने एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ट्रेन ट्रैवल को। एक और चीज है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की भी बात है, और सुबिमल जी 1674 लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए गए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में, तो आपको लगता है कि मेक इन इंडिया का असर भी हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं?
2: जी, जो प्रयास रहा कि एक मेक इन इंडिया और दूसरा इंडिजनाइजेशन, अगर आप रक्षा के क्षेत्र में जाए वहां भी ये प्रयास हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो सामान लगते हैं राउटर से लेके सब कुछ वो भी लोकल प्रोडक्ट है, और रेलवे लोकोमोटिव्स, रेलवे कोचेस, रेलवे ट्रैक्स, हर में जो R&D की प्रयास होके लोकल प्रोडक्ट्स बन रहा है, लोकल सप्लाई चेन की जो नेटवर्क बनाया जा रहा है, उससे काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम कम समय में और जिस तरीके से हमें रेलवे की एक्सपेंशन प्लान्स है। अब मैं फिर भी अगर नॉर्थ ईस्ट का भी उदाहरण देता हूँ, इस साल नॉर्थ ईस्ट की बजट रेलवेज की करीब 11,500 करोड़ रुपया के है, तो वहाँ जिस तरीके से आज ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, क्योंकि हर सारे राज्य में सबका डिमांड बढ़ते रहता है, नॉर्थ एक रेलवे एक पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट रहता है, और लोगों का कनेक्टिविटी जैसा कि मैंने त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की बात की, तो इन सब के लिए अलग अलग ट्रेन जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक वाइब्रेंट सेक्टर रेलवेज में देखा जा रहा है, उसमें लोकल एंटरप्रेनर्स भी सप्लाई चेन में आ रहा है, तो इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो जरूर हो रहा है, लेकिन और एक बड़ी बात है कि जो पहले नौजवान को मौका नहीं था और बहुत समय वो हथियार भी ले, आज वो नहीं हो रहा है, आज वो सामने आ रहा है
1: जी।
2: तो उससे समाज में भी एक बड़ा सुधार हो रहा है धीरे धीरे।
1: तो इसी संदर्भ में जो नॉर्थ ईस्ट के अकॉर्ड्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं पिछले 12 वर्षों में, वो भी आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है?
2: बिल्कुल, हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब से आए तब से वन ट्रैक एफर्ट से ये प्रयास रहा कि जितने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स है, देखिए उनके कुछ खौफ थे बहुत सालों से और कुछ लोग इसका फायदा भी उठाए है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर उत्तर पूर्व को शांत रखना है, उत्तर पूर्व में उन्नति होना है, तो इनको फर्स्ट बिठा के बात करो क्या प्रॉब्लम है, और मैं कई लोगों को मैंने देखा कि वो जब यहाँ आते थे बात करते थे, इसके बाद बड़ा खुश होके वापस जाते थे कि एक इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हो रहे थे, उससे और अलग उग्रवादी ग्रुप को भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई सुनते। बट सबसे बड़े बात यह है कि जो इनको वादा किया जाता है कि आपका सेटलमेंट के हिसाब से आपका रिहेबिलिटेशन कैडेट्स के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, इनको ये एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ये सारा वादा टाइम बाउंड मैनर में होता है और गृह मंत्री जी की वहां से ये मॉनिटर होता है, उससे एक कॉन्फिडेंस बहुत है। और अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे जो सेटलमेंट हुए, ये जो बड़ा सेटलमेंट हुए पिछले 2019 से, उनमें से बहुत लोग सार्वजनिक जीवन में भी आए, बहुत लोग एंटरप्रेनर्स भी बने हैं, तो ऐसे समाज की भी फायदा हुआ, और ये जो एक तनावपूर्ण स्थिति हमेशा वहां होता था वो आज वो नहीं है।
1: और अनिल जी, अगर हम आपने वाइब्रेंट वर्ड यूज किया अभी सुबिमल जी, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो शुरू किया वर्तमान सरकार ने, जिसके तहत जो सीमा के पास जो गांव है उनको पहले कहा जाता था लास्ट विलेज, अब कहते हैं, वो कहते हैं कि ये फर्स्ट विलेज है, और जिस तरह का उनके लिए प्रोविजन है वहां पे डेवलपमेंट के लिए, और वो कहते हैं कि ये तो हमारे आईज और ईयर्स है, कितना बड़ी बात है ये एक एटीट्यूड चेंज में भी और वहां के विकास के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हमारा जो

0: बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और इन्होंने एक स्कीम भी चलाई है कि जो बॉर्डर विलेजेस है उनका टूरिज्म, तो उनके टूरिज्म में क्योंकि एक सेफ्टी की बात होती है तो उसके लिए जब सेना हमारी उसको एक जिम्मेवारी लेती है तो आज की तारीख में हम देखेंगे जो नई जनरेशन है तो नई जनरेशन हमारी जो शिमला मनाली नहीं जा रहा, वो बॉर्डर विलेजेस में जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, वो उनके लिए आज जिसको आपने बताया ना कि फर्स्ट विलेज, तो वो फर्स्ट विलेज पे हर जो चाहे वो यंग या जेंजी जिसको हम बात कहें तो जेंजी अपने आके ये बताता है कि जी मैं इस स्टेट के इस फर्स्ट विलेज पे गया, तो दूसरा वो कहता है अच्छा तुम वहां गए तो मैं और उससे एक्सट्रीम जगह पे जा रहा हूँ। तो ये एक जो कंपटीशन चला है इससे अब वो जो उन विलेजेस में ना तो वहां पर पहले एजुकेशन थी ना वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट का स्कोप था या कोई किसी तरह की और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, अब वो टूरिज्म ने उनको इन हाउस अपॉर्चुनिटी दी है एंड दे आर मेकिंग गुड सॉर्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर टाइप ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जिस तरह के मोटल्स बनाते हैं या तो उन लोगों ने अपने हॉस्पिटलिटी अब उन्होंने जिम्मेवारी ली है और जिसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर विलेजेस है दे आर मोर पिकनिक टूरिज्म स्पॉट देन द सिटीज ऑफ देयर कैपिटल।
1: बिल्कुल। एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कनेक्टिविटी की हम जैसे बात कर रहे हैं, जो हाईवेज में इतनी ज्यादा गति से बढ़े हैं, अगर हम देखें तो 61% के करीब बढ़ गए हैं जब 2014 और मार्च 2006 के बीच, अब लगभग 1,500 किलोमीटर के हमारे हाईवेज हैं और 4 लेन जो हाईवेज है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारतमाला जो परियोजना है, कैसे देखते हैं आप इस कहें कि जो रोड कनेक्टिविटी है उस पर इतना जो बल दिया जा रहा है ताकि पूरा देश आपस में जुड़ पाए?
2: देखिए, ये रोड कनेक्टिविटी वाजपेयी जी की समय से एक मैं कहता हूँ बड़ा फोकस्ड एरिया रहा बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की, और उस समय जितने हुए अभी मोदी सरकार के टाइम में ये और गति से ये काम हुआ है। और रोड की लेंथ के अलावा क्वालिटी ऑफ द रोड जो मैं समझता हूँ बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आजकल गाड़ियां जो आ रहे हैं वो बड़ा उसमें भी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो एक हाई स्पीड रोड्स आपको क्वालिटी रोड्स चाहिए होता है, लेन्स ज्यादा चाहिए होता है, वॉल्यूम बढ़ गए तो उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हर कॉरिडोर्स जो बने हैं लोगों में एक गाड़ी लेके सड़क में जाना देश भर में, ये तुम्हें देखो दिल्ली बॉम्बे में आजकल बहुत लोग चले जाते हैं चला के, क्योंकि एक तो थ्रिल फैक्टर होता है कि रोड सही है, लेकिन साथ साथ में जो बिजनेस भी होते हैं, जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं बीच में, जो अलग अलग शहर या गांव में भी लोग जाते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक वाइब्रेंसी रहता है कि इस क्षेत्र में। और एक बात जो मैं देखता हूँ, जो रोड की हाईवेज की जो मेंटेनेंस है उसमें भी बहुत सुधार आए, पहले अब जो जिस स्पीड में ये रेक्टिफिकेशन करेक्शन होते थे आज वो बहुत जल्दी होते, तो मतलब ओवरऑल एक रोड क्षेत्र में और सेफ्टी को नजर में रखते हुए तो एक प्रयास रहे
1: है। सो इससे आपको लगता है कि जो नए नए इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सरकार हमेशा छोटे जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देती है, उनके लिए बहुत आसान होता है अपना सामान या इवन फैक्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचे, फैक्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट्स तक पहुंचे, सप्लायर्स तक पहुंचे, तो बहुत सहूलियत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी।
2: जहां रेल नहीं है या बहुत जगह जहां रेल भी है वहां रोड नेटवर्क्स की इम्प्रूवमेंट होने के बाद हम देखे हैं कि और बहुत दूर दूरस्थ इलाके के लोग भी आज एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं और बाहर आके अपने सामान दे पा रहे हैं या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए भी इनके मटेरियल्स भी ये मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये टू वे ट्रैफिक रोड क्षेत्र में उन्नति के लिए हो रहे हैं।
1: एक और जो बहुत फ्लैगशिप कहें कि जो स्कीम रही है इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है एस्टेब्लिशमेंट वो है चनाब अंजी खांड रेल लिंक जो हिमालयाज में बना है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? विश्व का कह रहे हैं कि हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है चनाब, कितना ये बड़ी उपलब्धि है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, हमारी सरकार के लिए?
0: जब से ये कनेक्टिविटी हमारा श्रीनगर के साथ में बना है तो ये अब मात्र 4 घंटे का, कटरा से 4 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं जहां पर 12 घंटे लगते थे। और जब इसका जो आर्क ब्रिज को अगर आप देखेंगे तो वहां जाके ऐसा लगता है जैसे मैं कि सपनों की दुनिया में हूं, और उसके अंदर उसमें जब ट्रेन गुजरती है और जो उसके पैसेंजर्स जब वो सीनरी देखते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में, क्योंकि रेलवे लाइन दिखती तो नहीं है नीचे से, तो उसको दिखता है कि नीचे एक नदी बह रही है और आप हवा में है, क्योंकि ये एक सिग्नेचर ब्रिज की तरह से है और नीचे उसका आर्क तो हमारे को एरियल

0: उसे दिखता है, बट वो ऐसा दिखता है कि मैं पहाड़ों में कहां पर पहुंचा हूं। ये ऐसा सीन तो ना कोई सड़क है ना कुछ, आप पहाड़ के बीच में से और एक कुछ किलोमीटर का जो स्ट्रेच है तो उसके बीच में आप निकल के जा रहे हो, और तो वो देखने में ऐसा लगता है कि रमणीय है। हमेशा सेब के सीजन में श्रीनगर में बारिश आती थी जिसकी वजह से वहां पर काफी जो सड़ जाता था उनका मटेरियल, और अब वो जो है अगर वो बारिश आएगी बट वो जो गुड्स ट्रेन के थ्रू इसको फ्रेट को लेके आएंगे और तो हमारी सप्लाईज मेंटेन रहेगी और वहां के फार्मर्स को बारिश का नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारा देश के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अंश है जो कि हमने इतने सालों में सोचा भी नहीं था, वो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी।
1: बिल्कुल, जैसा कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल है, 260 किलोमीटर पर आवर तक की हवा को वो रिजिस्ट कर सकता है, और जो अंजी खाट ब्रिज है वो भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन में ही पड़ता है, वो अर्थक्वेक्स को विदस्टैंड कर सकता है, और वो भी फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। सो आपको लगता है कि ये सब हमारा एक शोकेस करते हैं भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक क्षमता है, एक बढ़ती मजबूती है पूरे विश्व में भी।
0: यस, अभी क्या था कि जो वंदे भारत के जो इस ब्रिज के हबीबुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 10 दिन पहले, तो तब उन्होंने बताया था कि ये अर्थक्वेक के साथ में इसके ऊपर हमारा बोले जी हमारे पास इतना इंतजाम है कि वो उस चीज के लिए भी हमने सेफ्टी का ध्यान रखा है। जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज वगैरह और इंजीनियरिंग मार्वल्स ये सारे सारी चीजें हैं, तो हमारी सेफ्टी इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाय द पुलिस एंड डिफेंस फॉर दिस ब्रिज ऑल्सो अलॉन्ग विद द आइकॉनिक व्यू ऑफ दिस ब्रिज।
1: सुबिमल जी आपके पास आते हैं, जैसा आप कह रहे थे कि अब नॉर्थ ईस्ट पूरे हमारे देश से जुड़ गया है जिससे उनके व्यापार को फायदा होता है, आवाजाही में फायदा होता है, टूरिज्म को फायदा होता है, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्रीज जो है उनके साथ भी एक जो जुड़ाव है वो अब संभव हो पा रहा है।
2: बिल्कुल हो पा रहा है, हो भी रहा है। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी सरकार की है उस साउथ एशियन कंट्रीज के साथ लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, वो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को अलग अलग इनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनको तैयार किया जा रहा है। मेघालय की लकाडोंग हल्दी है, वहाँ की एक बड़ा स्पेशल हल्दी है, मिजोरम की जिंजर, सिक्किम की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नागालैंड की कॉफी, इसमें प्राथमिकता दे के फंडिंग दे के उसमें R&D करके लिंकेजेस कैसे आगे जा सकते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट हो सकते हैं, इसमें बहुत प्रयास हो रहा है। इसमें जो अब नए सारे एंटरप्रेनर्स ये सारे क्षेत्र में इन राज्यों से आ रहे हैं, इनके साथ साथ किस तरीके से राइस प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अभी अभी थाईलैंड से एक एडुकेशन की कोऑपरेशन के लिए गुवाहाटी और शिलोंग में पिछले हफ्ते बड़े एक डेलीगेशन आए थे वहां की यूनिवर्सिटीज की, तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसमें प्रयास हो रहे।
1: क्या देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह से जुड़ाव का पूरा जैसा आपने वर्ड यूज किया कि जोश के साथ जो ये कार्य चल रहा है, आपको लगता है कि यही नींव होगी विकसित भारत की, इसके बल पर ही हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक?
0: पहले उन लोगों का जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, तो उनको हमारा देश भारत एक अलग देश लगता था, और आज वो लोग प्राउडली लीड करते हैं कि ये देश हमारा है। तो ये वाला चीज का जो चेंज मैंने जो देखा है, तो यस आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी कैन यूनाइटेडली से विकसित भारत।
1: सुबिमल जी आप तो कुछ कहना चाहेंगे?
2: मैं ये कहूंगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयास रहे, इसके साथ साथ और सारे कुछ प्रोजेक्ट्स रहे, जैसे डिजिटल पेमेंट्स आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में दूर दराज इलाका में वो पेमेंट कर पा रहे, फिर साथ साथ में आपके आधार के जो ऑथेंटिकेशन, इनसे इन लोगों का बीच में एक एम्पावरमेंट की सेंस आती है कि हम भी सबके साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। जो प्रयास रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से
1: और गवर्नमेंट स्कीम्स भी वेलफेयर जो है बिल्कुल पहुंच पाया है
2: बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई मिडिलमैन नहीं है, और इसके साथ साथ जो लोगों का बीच में कॉन्फिडेंस आया है, मैं समझता हूँ ये जो 25 साल प्रधानमंत्री जी के गवर्नेंस इकोसिस्टम में रहे उससे कोशिशें है हम सब एक साथ मिलकर कामयाबी करेंगे।
1: सो अनिल जी, सुबिमल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने प्रकाश डाला कि किन विभिन्न तरीकों से पूरा भारत अब आपस में जुड़ रहा है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 17वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा सीमाओं से शहरों तक जुड़ता भारत। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के पूर्व उप परिवहन आयुक्त अनिल चिकारा और पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 7:45:34 हुए हैं। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका, लेकर कार्यक्रम दर्पण। आइए सबसे पहले एक नजर। एक नजर में आज हम बातें करेंगे वन्य जीव सप्ताह के बारे में। भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में वन्य जीवों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वन्य जीव हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक जीवन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगल, वन्य पशु पक्षी, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन मिलकर हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। भारत जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। यहाँ बाघ, हाथी, गैंडा, शेर, हिरन, तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ और अनेक प्रकार के सभी तथा पक्षी तथा अन्य जीव पाए जाते हैं। हिमालय से लेकर सुंदरबन के मैग्रोव वनों तक और रेगिस्तानी क्षेत्रों से लेकर घने जंगलों तक विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास है। प्रत्येक जीव प्रकृति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य वन्य जीवों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। वनों की कटाई, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, अवैध शिकार, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों का बढ़ता प्रभाव वन्य जीवों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। कई पशु पक्षियों की प्रजातियां दुर्लभ होती जा रही हैं। यदि समय रहते उनका संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। वन जीवन सप्ताह केवल एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का अवसर है। हमें वर्ष भर वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, सुंदर तथा संतुलित प्राकृतिक संसार छोड़ना चाहिए। ये थी एक नजर।

और आइए दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम साप्ताहिकी का। सप्ताह भर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी, आलेख संपादन नुपुर तिवारी का है।

नमस्कार। शहर की तमाम गतिविधियों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम साप्ताहिकी में। आज के अंक में हम बात करेंगे विश्व हृदय दिवस, गांधी जयंती, विश्व रेबीज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गांधी जयंती से। 2 अक्टूबर को देश भर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके सत्य, अहिंसा, स्वच्छता तथा मानवता के संदेश को याद किया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा को प्रभावी जन आंदोलन के रूप में अपनाया। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छाड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में प्रार्थना सभाओं, स्वच्छता अभियानों और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अहिंसा के सिद्धांत और शांति के संदेश को विश्व भर में बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी के विचार आज भी सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और सामाजिक सद्भाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए बात करते हैं हृदय दिवस की। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य हृदय और हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना

0: हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी देना है। विश्व हृदय महासंघ के अनुसार हृदय एवं रक्तवाहिकाओं से जुड़ी बीमारियां दुनिया भर में मृत्यु का मुख्य कारण है और हर वर्ष 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान इन बीमारियों के कारण जाती है। वर्ष 2026 में विश्व हृदय दिवस की थीम डोंट मिस ए बीट रही, जिसके माध्यम से हृदय रोग के ऐसे संकेतों को पहचानने पर जोर दिया गया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस वर्ष अभियान में लोगों को अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहने, नियमित शारीरिक गतिविधि करने, स्वस्थ खान पान अपनाने, तंबाकू से दूरी रखने तथा उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विश्व हृदय महासंघ ने बताया कि हृदय संबंधी बीमारियों से होने वाली बड़ी संख्या में मौतों को जोखिम कारकों की रोकथाम और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से टाला जा सकता है। 2026 को विश्व हृदय महासंघ ने नेग्लेक्टेड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पर विशेष ध्यान देने का वर्ष भी घोषित किया है। इस विषय पर कार्डियोलॉजिस्ट PK हाजरा ने बताया कि
1: इस साल का जो थीम है डोंट मिस ए बीट, इसका मतलब ये है आपको शरीर में कोई चीज कोई साइन सडनली आए, जैसे सांस का तकलीफ या पेन, आपको शरीर में वीकनेस, आपको चक्कर आ रहा है, आपको ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ गया, डोंट मिस दोज साइंस, मतलब उसको इग्नोर मत कीजिए। आप इग्नोर करोगे तो आपका जान जा सकता है और डिले करोगे तो जो हार्ट का जो मसल है वो रिकवरी ना भी कर सकता है। मतलब हार्ट इतना नाजुक है, इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करोगे, उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं करोगे तो हार्ट परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो वर्ल्ड हार्ट डे में, विश्व हृदय दिवस में हम लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं, लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आजकल 2026 में हार्ट डिजीज के कारण मरना एक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत कुछ चीज आ गया इसमें, आप मरने का चांस बहुत कम हो गया, इसमें मत मरो।
0: आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या विश्व बुजुर्ग दिवस भी कहते हैं। बुढ़ापा जीवन का अवसान नहीं बल्कि अनुभवों का शिखर है। उम्र का बढ़ना जीवन की स्वाभाविक और अपरिहार्य प्रक्रिया है, लेकिन बदलती जीवन शैली, तेजी से बढ़ती तकनीक, एकल परिवारों की प्रवृत्ति और भागदौड़ भरी जिंदगी ने वृद्धावस्था से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों को नया स्वरूप दिया है। ऐसे समय में 1 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हमें ठहर कर यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने बुजुर्गों के केवल देखभाल और सहानुभूति के पात्र के रूप में देख रहे हैं या उन्हें समाज की मुख्यधारा में सक्रिय, सम्मानित और अधिकार संपन्न भागीदार का स्थान दे रहे हैं। इस विषय में वरिष्ठ पत्रकार नारायण राव ने कहा कि
2: इस साल का थीम है दीर्घायु रहने में पुराने तौर तरीकों पर दोबारा सोचना, क्योंकि पुराने ढर्रे पर चलते हुए नए जमाने की बेहतर जिंदगी से तालमेल रख पाना नामुमकिन है। हाशिए पर आ गए वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय रहने, अनुप्रेरित करने और खुशहाल रखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वृद्धजनों के हित में भारत सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके बारे में प्रचार प्रसार अत्यंत जरूरी है ताकि उन्हें सहूलियत के साथ जीवन जीने का मौका मिल पाए। यूं तो वरिष्ठ नागरिकों की बेहतरी में सरकार की पहल प्रशंसातीत है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की विशिष्ट नागरिकों के सहायतार्थ सक्रिय योजनाओं के तहत आवास के लिए वित्तीय सहायता, उपलब्ध सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए अनुदान और वयोश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कारों के माध्यम से विशिष्ट जनों और संगठनों को मान्यता देना शामिल है।
0: आइए अब बात करते हैं विश्व रेबीज दिवस के बारे में। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 में विश्व रेबीज दिवस की थीम स्ट्रॉन्गर टुगेदर यानी मिलकर अधिक मजबूत रही। इस वर्ष की थीम का मुख्य संदेश है कि रेबीज को समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों का मिलकर काम करना आवश्यक है। इसमें स्थानीय समुदायों, पशु चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, सरकारों, शिक्षकों और विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रेबीज एक घातक लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी है और मानव रेबीज के अधिकांश मामले संक्रमित कुत्तों के काटने से जुड़े होते हैं। रेबीज की रोकथाम के लिए कुत्तों का नियमित टीकाकरण, लोगों में जागरूकता, प्रभावी निगरानी और पशु के काटने या खरोचनों के बाद समय पर उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। WHO ने 2030 तक कुत्तों से होने वाली मानव रेबीज से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लक्ष्य पर भी जोर दिया है। 2026 की स्ट्रॉन्गर टुगेदर थीम इसी सामूहिक प्रयास और वन हेल्थ दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जिसमें मानव

पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। अभी आप सुन रहे थे शहर के तमाम गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम साप्ताहिकी। हम फिर मिलेंगे अपने अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

और साप्ताहिकी के बाद चलते चलते आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवां से गीत। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आरडी बर्मन का है। इस गीत को सुनते सुनते आपके दोस्त रोशन मिनालका को यहीं आगे दीजिए। मिलूंगा फिर किसी अगली शाम, तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:15 हुए हैं। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा हफ्तरोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां आपके रेडियो मेजबान अयाज अहमद रोहवी के साथ। तो फिर दोस्तों, आप अपने मोबाइल रेडियो फोन को ट्यून कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी दस्तयाब है, या फिर अपने मोबाइल फोन पर संचयता चैनल टाइप करके ऑनलाइन रेडियो पर भी ये प्रोग्राम समाप्त कर सकते हैं।

0: दोस्तों, अब हम प्रोग्राम के सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं नवाए शायर की तरफ। इस हफ्ते हम आपको मगरबी बंगाल के मुमताज शायर जनाब खुर्शीद मलिक से उनका खूबसूरत कलाम आपकी नजर करेंगे, समाअत फरमाएं।
1: गजल का मतलब यूं हुआ है कि दिन में भी लग रहा है अंधेरा है रात में, दिन में भी लग रहा है अंधेरा है रात में, गर्दे शबे फराक जमी है निगाह में, गर्दे शबे फराक जमी है निगाह में, और दिल के खराब होने का वाहिद सबब है ये, दिल के खराब होने का वाहिद सबब है ये, लज्जत हजार रखी गई है गुनाह में, लज्जत हजार रखी गई है गुनाह में, पहचान भी न पाऊं अगर देख लूं उसे, पहचान भी न पाऊं अगर देख लूं इसे, काटी हैं इतनी रातें उजाले की चाह में, काटी हैं इतनी रातें उजाले की चाह में। और एक शेर यह हुआ है कि सब कुछ तो तुझ पे वार चुका हूं ए जिंदगी, सब कुछ तो तुझ पे वार चुका हूं ए जिंदगी, क्या नजर अब गुजारूं तेरी बारगाह में, क्या नजर अब गुजारूं तेरी बारगाह में, और होकर रहेगा मुलतवी तारीकियों का जश्न, होकर रहेगा मुलतवी तारीकियों का जश्न, जलता है ये चिराग हवा की पनाह में, जलता है ये चिराग हवा की पनाह में, और परतें खुली तो सारा जमाना हुआ है दंग, परतें खुली तो सारा जमाना हुआ है दंग, क्या बदनुमाई उभरी है रंगीले शाह में, क्या बदनुमाई उभरी है रंगीले शाह में। और मकता यूं हुआ है कि कुछ पीरजादे हो गए खुर्शीद के मुरीद, कुछ पीरजादे हो गए खुर्शीद के मुरीद, कुछ बात तो ज़रूर है इस कचकलाह में, कुछ बात तो ज़रूर है इस कचकलाह में। मतलब यूं हुआ कि क्या नीयत आलूदा करना महलों के मीनारों से, क्या नीयत आलूदा करना महलों के मीनारों से, खुश रहता हूँ अपने घर की काई ज़दा दीवारों से, खुश रहता हूँ अपने घर की काई ज़दा दीवारों से, और खंजर वंजर से कब डरता है मेरा दीवानापन, खंजर वंजर से कब डरता है मेरा दीवानापन, मैं तो अंदर से ज़ख्मी हूँ लहजे की तलवारों से, मैं तो अंदर से ज़ख्मी हूँ लहजे की तलवारों से, और छूट गए जब रिश्ते नाते गमों ने दामन थामा, छूट गए जब रिश्ते नाते गमों ने दामन थामा था, बदले हैं हालात तो कैसे कट जाऊं इन यारों से, बदले हैं हालात तो कैसे कट जाऊं इन यारों से, और पूछ रहा है मुझसे लेकिन क्या बतलाऊं साहिल को, पूछ रहा है मुझसे लेकिन क्या बतलाऊं साहिल को, मेरी नाव गुजर कर आई है कितने मझधारों से, मेरी नाव गुजर कर आई है कितने मझधारों से,

0: मैं अपना खून जलाता हूँ, तुम रोशनी करो। और कुछ तो करो कि आस की खेती हरी रहे, कुछ तो करो कि आस की खेती हरी रहे। वादा निभा ना पाओ तो खाना पूरी करो, वादा निभा ना पाओ तो खाना पूरी करो। और मेरे गमों निकल के ना जाओ खुशी के घर, मेरे गमों निकल के ना जाओ खुशी के घर। ऐसा ना हो कि तुम भी वहाँ खुदकुशी करो, ऐसा ना हो कि तुम भी वहाँ खुदकुशी करो। और लौटा हूँ झांक कर मैं हद आसमां के पार, लौटा हूँ झांक कर मैं हद आसमां के पार। तुम जंतरी टटोलो जुहल मुश्तरी करो, तुम जंतरी टटोलो जुहल मुश्तरी करो। और हर मरहले पे छोड़ के रखो न बेलगाम, हर मरहले पे छोड़ के रखो न बेलगाम। गाहे बगाहे अपने लिए मुखबरी करो, गाहे बगाहे अपने लिए मुखबरी करो। और एक शेर यूं हुआ है कि मकड़ी कहीं दहाने पे जाले न तान दे, मकड़ी कहीं दहाने पे जाले न तान दे। इतना भी इख्तियार न तुम खामोशी करो, इतना भी इख्तियार न तुम खामोशी करो। और ऐसा न हो ऐसा न हो रिफू का ही इम्कान टूट जाए, ऐसा न हो रिफू का ही इम्कान टूट जाए। तुम यूं न तार तार मेरी जिंदगी करो, तुम यूं न तार तार मेरी जिंदगी करो। और मकताई हुआ है कि खुर्शीद शहरियारी का दस्तूर ये नहीं, खुर्शीद शहरियारी का दस्तूर ये नहीं। तुम सुख उठा रहे हो तो सबको दुखी करो, तुम सुख उठा रहे हो तो सबको दुखी करो।
1: दोस्तों अभी आप नवाए शायर के तहत समाअत फरमा रहे थे जनाब खुर्शीद मलिक से उनका कलाम। यहाँ ये वाजे रहे कि उनका ये कलाम इससे कबल भी संचयता चैनल पर नशर किया जा चुका है। अब इस हफ्त रोज़ा उर्दू प्रोग्राम कहकशां के सफ़र के आखिरी पड़ाव में हाजिर है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की खूबसूरत आवाज़ में ये गज़ल समाअत फरमाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोष

0: ये विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में

0: पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
2: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
3: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
2: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
4: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
2: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सेकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जल

0: पूर्व मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीत गया।

0: साहित्य के आकाश पर कुछ हस्ताक्षर ऐसे होते हैं जिनकी रचनाएं समय की धूल में धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि वक्त के साथ और अधिक प्रखर होती चली जाती हैं। इस वर्ष हम भारतीय कविता के शिखर पुरुष कवि रत्न कुंवर नारायण का जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। कुंवर नारायण का संपूर्ण रचना कर्म इस बात का साक्षी है कि एक संवेदनशील रचनाकार अपने युग के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से किस प्रकार संवाद स्थापित करता है। चक्रव्यूह, आत्मजयी, अभिज्ञे और कुमार जीव तक उनकी कविताओं में पौराणिक कथा संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज के जटिल अंतर विरोधों और मानवीय विडंबनाओं का बेहद गंभीर अंकन मिलता है। पर वहाँ कविता भी है। वो जहाँ एक ओर मनुष्य के नितांत एकांत और आंतरिक संघर्ष पर विमर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर युग जीवन की उथल पुथल को भी पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी कविता का मुख्य स्वर बनाते हैं। कुंवर नारायण के इसी सृजनात्मक लेखन शैली के अलग अलग अंतः सूत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय।
1: कुंवर नारायण भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर हमें समृद्ध करते हैं कि उनकी भाषा ठहरी हुई भाषा नहीं है। जिस तरह से हिंदी कविता में छायावाद की भाषा को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप उसको पढ़कर कह सकते हैं कि ये छायावाद की भाषा है या ये प्रसाद की भाषा है, ये महादेवी की भाषा है। कुंवर नारायण की रचनाएं भाषा को एक निश्चित ढांचे या मुहावरे में कैद कर लेने की छूट नहीं देती। इसलिए उनकी भाषा के तीन तहें हैं। दरअसल पहली तह वो है जहाँ पर कुंवर नारायण की कविताओं का मिजाज दार्शनिक है। उस दार्शनिकता को व्यक्त करने के लिए कुंवर नारायण जिस भाषा को विकसित करते हैं वो अभिजात्य संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो आत्मजयी की भाषा है। दूसरा, कुंवर नारायण की कविताएं खास तौर पर जो इतिहास पर हैं, जैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी पर, दिल्ली पर, लखनऊ पर जो कविताएं लिखी, उनकी कविताओं में उर्दू के शब्द आते हैं, डिक्शन भी उनका उर्दू के करीब जाता है। और तीसरे तरह की वे कविताएं हैं जहां पर वो जीवन के सामान्य अनुभवों को दर्ज करते हैं, वहां बोलचाल की भाषा भी है। तो आप देखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताएं कविताओं की भाषा परतदार भाषा है, जिसमें तत्समता भी है, जिसमें उर्दू भी है और जिसमें बोलचाल की भी है। निर्भर करता है कि वो कविता किस विषय पर, किस इलाके में लिखी गई है। मोटे तौर पर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है और अंतर्वस्त्र कुछ अलग किस्म की चीज़ है। जिस प्रकार किसी भी छिलके को उसके फल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी रचना को उसकी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। दरअसल जो अनुभूति है, जो विचार है, वो तो भीतर है, वो घटित हो रहा है रचनाकार के अंदर। जब भी वह रूप लेगा, जब भी वह बाहर आएगा, जब भी वह अभिव्यक्त होगा, तो साहित्य में उसका एकमात्र माध्यम भाषा है। किसी दूसरी कला में भाषा अपेक्षित नहीं है, न मूर्ति में, न चित्रकला में, न संगीत में। केवल साहित्य है जिसकी सत्ता ही भाषा पर निर्भर करती है। इस तरह से जब भी अनुभव बदलेगा, जब भी संबंध बदलेंगे, जब भी दृष्टिकोण बदलेगा, तो निश्चित रूप से भाषा बदलेगी।
0: कुंवर नारायण की भाषा में संकोच, शालीनता और एक गहरी मध्यम आँच थी, मानो वे शोर से किसी दूर एकांत में बैठकर खुद अपने ही वजूद से बहस कर रहे हों। आज जब हमारी युवा पीढ़ी एक अजीब से मानसिक भंवर और लगातार पीछा करते सेल्फ डाउट से गुजर रही है, तो कुंवर नारायण की ये ठहरी हुई लेखन शैली एक मुकम्मल इलाज की तरह सामने आती है। वो हमें सिखाते हैं कि हर उलझन का तुरंत जवाब पाना जरूरी नहीं, कभी कभी सवालों के साथ चुपचाप जीना भी एक बड़ी बौद्धिक ताकत है। और अब इस दार्शनिक था से बाहर निकलकर साहित्य के कुछ और पन्ने पलटते हैं, एक दूसरे अध्याय का रुख करते हैं। साहित्य लेखन में शालीनता और तहजीब के नाम पर

0: हमेशा से कुछ तयशुदा लकीरें खींच दी जाती हैं, खास तौर पर तब जब बात एक स्त्री के लिखने, बोलने और सोचने की हो। लेकिन उन तमाम गढ़ी हुई सीमाओं को अपने बेबाक अक्खड़ कलम से बीच से चीर देने का हुनर अगर किसी ने सबसे पहले आजमाया तो वो थी इस्मत चकताई। सुनिए हमारी ये प्रस्तुति, कागजी है पैरहन।
1: आने वाली 24 तारीख उर्दू कथा साहित्य की उन ग्रैंड डेम की याद को समर्पित है जिन्होंने पितृ सत्तात्मक साचों को पहली बार बौद्धिक धरातल पर चुनौती दी।
2: बदायूं के रूढ़ीवादी कुनवे की तंग दीवारों से लेकर जिंदगी भर की आजमाइशों तक इस्मत का वजूद मुसलसल बगावत था।
1: छुई मुई, बैलेंस शीट और उनके बहुचर्चित उपन्यास टेढ़ी लकीर ने उस मध्यम वर्गीय यथार्थ को कागज पर उतारा जिससे मुख्य धारा का साहित्य अक्सर आंखें चुरा लेता था।
2: उन पर अश्लीलता के इल्जाम मढ़े गए और अदालतों के कटघरे खड़े किए गए।
1: मगर अदालत में पेशियों के उस दौर के बीच भी सादत हसन मंटो के साथ उनकी वो बेपरवाह संगति इस बात की गवाही थी कि वो किसी भी कानूनी पहरे से दबने वाली कथाकार नहीं थी।
2: और आगे चलकर जब वक्त ने उनके इस विद्रोही साहस के महत्व को स्वीकार किया तो साहित्य में उनके इस अनूठे अवदान के लिए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया।
1: अदब की इस महफिल में इस्मत चुगताई के तीखे फलसफे और उनकी कहानियों के ताने बाने को अपनी दस्तकारी से सजा रहे हैं कलाकार उदित यादव और आमना।
3: जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस्मत से मेरी पहली मुलाकात के नक्श अभी तक दिलो दिमाग में महफूज हैं। बहुत ही सादा लिबास में थी, छोटी कन्नी की सफेद धोती, सफेद जमीन का काली खड़ी लकीरों वाला चुस्त ब्लाउज, हाथ में छोटा पर्स, पाँव में बगैर एड़ी का ब्राउन चप्पल, मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक, छोटे मगर घुंघराले बाल, जरा सा मुस्कुराने पर भी गालों में गड्ढे पड़ जाते थे।
4: इस्मत पर लिखने के दौरे पड़ते हैं, ना लिखे तो महीनों गुजर जाते हैं, पर जब दौरा पड़े तो सैकड़ों सफे उसके कलम के नीचे से निकल जाते हैं। खाने पीने नहाने धोने का कोई होश नहीं रहता, बस हर वक्त चारपाई पर कोहनियों के बल औंधी लेटी अपने टेढ़े मेढ़े आराब और इमला से बेनियाज खत में कागजों पर अपने ख्यालात मुंतकिल करती रहती है। टेढ़ी लकीर जैसा तूल तवील नॉवल मेरा ख्याल है इस्मत ने कुछ 7-8 नशिस्तों में खत्म किया था। उसका कलम और उसकी जबान दोनों बहुत तेज हैं। लिखना शुरू करेगी तो कई मर्तबा उसका दिमाग आगे निकल जाएगा और अल्फाज बहुत पीछे हाफते रह जाएंगे। बातें करेगी तो लफ्ज एक दूसरे पर चढ़ते जाएंगे। शेखी बगाड़ने की खातिर अगर कभी बावर्ची खाने में चली जाए तो मामला बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तबीयत में चूंकि बहुत ही उजलत है इसलिए आटे का पेड़ा बनाते ही सिकी सिकाई रोटी की शक्ल देखना शुरू कर देती है। इस्मत की तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी। पहले शादी से इनकार करती रही, जब आमादा हुई तो बीवी बनने से इनकार किया। बीवी बनने पर जो तो रजामंद हुई तो माँ बनने से मुनकिर हो गई। तकलीफें उठाएगी, सोबतें बर्दाश्त करेगी, मगर जिद से कभी बाज नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये भी उसका एक तरीका है जिसके जरिए वो जिंदगी के हकायक से दो चार होकर बल्कि टकरा कर उनको समझने की कोशिश करती है। वो कहती है,
3: भाई मैं बोल्ड इसलिए हूँ क्योंकि भाइयों के साथ पली थी। सीना, पिरोना, काढ़ना और बुनना, इन सब चीजों में मेरा कभी जी ही नहीं लगा। और रोने, गला फाड़कर चिल्लाने में हम सब भाई।

0: बहनों को खासी महारत हासिल थी। हमारी अम्मा बौखला कर हमारा कहना मानने पर मजबूर हो जाती। हमें अपनी इस ताकत का शिद्दत से एहसास था। बच्चे रो पीट कर ही अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं।
1: अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। हम पूछते कि भाई क्यों मारा है, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, तो जवाब में कहती आज नहीं की तो कल करोगी। लेकिन फिर भी बड़ी प्यारी लगती थी। पता नहीं इतना मारती थी तब भी मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती थी।
0: खैर साहब, बचपन जैसे तैसे बीता। ये कभी पता न चला कि लोग बचपन के बारे में ऐसे सुहाने राग क्यों अलापते हैं। बचपन नाम है बहुत सी मजबूरियों का, महरूमियों का। बड़े होकर एक पोजीशन बनती है जो नाइंसाफियों का मुकाबला करने की ताकत बख्शती है। 8 बड़े भाई बहनों की शफकतें झेलने के बाद बड़े होने का बेचैनी से इंतजार था। जब घर में छोटे भांजे भतीजे पैदा होने लगे तो अपनी बुजुर्गी का एहसास निहायत तसल्ली बख्श साबित हुआ।
1: मेरी बहनें निहायत सुघड़ थीं। उर्दू, फारसी, कुरान शरीफ के अलावा कशीदकारी, बुनाई, सिलाई और खाने पकाने में मशा, और मैं निहायत फुहड़। भाइयों की नकल में पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल दौड़ाना, हर जगह मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होता। उन्हें भी मुझ पर तरस क्यों आता आखिर? मैं अब्बा की शह पर उनकी बराबरी पर तुली हुई थी। अजीम भाई हमेशा के बीमार ही थे। मैं लड़की होने की वजह से भाइयों के साथ ना निभा सकती थी और वो बीमारी की वजह से मजबूर थे। पर साहब, उन्हें कुछ मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के तो बैल होते हैं, तुम बैल क्यों बनो, पढ़ाई में तुम उनसे टक्कर लो, वहां तुम उन्हें मार लोगी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। 2 बार मुझे डबल प्रमोशन दिलवाया। उनकी शह पाकर मैंने कुरान का तर्जुमा, हदीसें और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताजा ताजा मालूमात का इजहार करना शुरू किया। मगर अब्बा की शह पाकर मैंने अपने वालिद के मुअम्मरी दोस्तों की सोहबत में बहुत कुछ सीखा।
0: मेरी अम्मा को मेरी हरकतें एक आंख न भाती थी। मेरे अंजाम की उन्हें सख्त फिक्र थी। ये मर्द मार बातें औरतों को जेब नहीं देती। वो इतनी गहराई से न इन बातों को समझती थी और न समझा सकती थी। मगर मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा क्यों डरती थी। ये मर्द की दुनिया है, मर्द ने बनाई और बिगाड़ी है। औरत एक टुकड़ा है उसकी दुनिया का, जिसे उसने अपनी मोहब्बत और नफरत के इजहार का जरिया बना रखा है। वो उसे मूड के मुताबिक पूछता भी है और ठुकराता भी है।
1: मैंने अपनी जिंदगी के नहायत दिलचस्प और नहायत ही कठिन लम्हे लिखने के सहारे झेले हैं। ये कलम मेरा रज़ाक भी है और हमदम भी, तन्हाई कबूलता चालता दोस्त भी। उसकी मौजूदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। मैं जब चाहूं इस उड़न खटोले के जरिए जिसे चाहूं बुला लूं, और जब वो आए तो जी चाहे उनसे कहूं, हंसाऊं, रुलाऊं या जी जलाकर खाक कर दूं, फिर मूड आए तो पुर्जा पुर्जा करके फना कर दूं, कठपुतलियों की तरह पुतले बनाकर जैसे चाहूं नचाऊं।
0: मैंने चोरी चुपके जब अंगारे पढ़ी, रशीद आपा ही मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आईं जिन्होंने मुझ में खुद एतमादी पैदा की। मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अलीगढ़ की छोटी जहर आलूद फिजा में वो बड़ी बदनाम थी। मेरी साफ़गोई को उन्होंने सराहा और फिर मैंने उनकी बताई हुई किताबें चाट डाली। फिर मैंने लिखना शुरू किया और मेरा ड्रामा फसादी साखी में छपा। उसके बाद और कहानियां लिखी और कोई कहानी रद्द नहीं हुई। एकदम मुझ पर एतराज होने लगे, लेकिन रिसालों से मेरी कहानियों की मांग बढ़ने लगी। मैंने एतराजात की कोई परवाह न की। मंटो के फोन से मालूम हुआ कि उस पर भी मुकदमा चला है, उसी कोर्ट में उसी रोज उसकी भी पेशी है। फिर सफिया और मंटो दौड़े आए। मंटो निहायत हशाश बशाश, जैसे किसी ने विक्टोरिया क्रॉस दे दिया हो। मैं दिल में बड़ी नादिम थी, बजाहिर बहादुरी जता रही थी, मगर मंटो से मिलकर शाहिद की भी ढारस बन गई और मुझे बड़ी तसल्ली हुई। दिल में तो धकड़ पकड़ हो रही थी, मगर मंटो ने वो शह दी कि मेरा भी डर निकल गया। कहने लगा, अरे एक ही तो मारखे की चीज लिखी है आपने, अमा शाहिद तुम भी क्या आदमी हो यार, तुम भी चलना, तुमने जाड़ों का लाहौर नहीं देखा।
1: चुप करो मंटो साहब, सफिया नर्वस होने लगी।

0: ताओं में वो तन्हाई और प्रेम का हमसफर बनकर चमकता है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हो या फिर सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण, हर बड़े रचनाकार ने शरद पूर्णिमा के इस चांद को अपनी संवेदनाओं का आईना बनाया है। आइए चांद और कविताओं के इसी रुपहले ताने बाने को सुनते हैं हमारी अगली लघु प्रस्तुति चांद कविताओं का हमसफर में।
1: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की एक कविता है चांदनी चुपचाप। चांदनी चुपचाप सारी रात सूने आंगन में जाल रचती रही, मेरी रूपहीन अभिलाषा अधूरेपन की मध्यम आंच पर नचती रही। व्यथा मेरी अनकही आनंद की संभावना के मनस चित्रों से परचती रही। मैं दम साधे रहा मन में अलक्षित आंधी मचती रही। प्रातः बस इतना कि मेरी बात सारी रात उघड़ कर वासना का रूप लेने से बचती रही।
2: शरद पूर्णिमा की रात, आसमान में खिला चांद और उसकी चांदनी। भारतीय साहित्य में चांद का ये रूप सिर्फ प्रकृति का सुंदर दृश्य नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहद ही आत्मीय माध्यम भी रहा है।
3: भक्ति काल के कवियों से लेकर आधुनिक दौर के रचनाकारों तक चांद ने प्रेम, विरह, स्मृति और जीवन के अनेक भावों को शब्द दिए हैं। कविता में चांद के इसी बदलते रूप और उसके साहित्यिक उपाख्यानों पर एक नजर डाल रही हैं डॉक्टर रिजवाना फातिमा, पूर्व शिक्षिका, दिल्ली विश्वविद्यालय।
4: हिंदी कविता में चांद केवल आकाश में चमकने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है बल्कि वह प्रेम, सौंदर्य, विरह, स्मृति, कल्पना, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं का एक बहुआयामी प्रतीक है। चांद को किस रूप में देखा जाता है, ये कवि की दृष्टि, उसकी भावभूमि, सामाजिक संदर्भ और काव्य परंपरा पर निर्भर करता रहा है। चांद को सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। चांद का उज्ज्वल चेहरा, उसकी शीतलता, उसकी आभा, प्रेम की कोमलता तथा आकर्षण को वो व्यक्त करती है। लेकिन इसके साथ ही भक्तिकालीन कविता की अगर मैं बात करूं तो सूरदास, उन्होंने वहां पर चांद को खिलौने के तौर पर प्रयुक्त किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कृष्ण जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि वो चांद रूपी खिलौना लेना चाहते हैं। चांद जो है वो प्रतीक रहा है मानवीय संवेदनाओं का, जो मानवीय रिश्ते हैं। हम तिकाल से निकल कर के रीतिकालीन कविता की तरफ जब आते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर चांद जो है वो विरह और अकेलेपन के साथ में प्रिय व्यक्ति की भी याद दिलाने का कार्य करता है, नायिका के मुख के सौंदर्य की भी बात करता है। उदाहरण के तौर पर बिहारी की कविता को लिया जा सकता है, कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहू पास नित प्रति पुण्य रहे आनन हो पुजास, मतलब कि नायिका का जो मुख है उसकी आभा के सामने चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास जो आसपास हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है क्योंकि उसका मुख का उजाला ही इतना देखे। चांद से भी श्रेष्ठ नायिका का मुख है ये। केशव ने रामचंद्र का में सीता के मुख के सामने चंद्रमा को दोषयुक्त सिद्ध किया है। तो कुल मिलाकर के जो चांद है वो हमें अलग अलग रूपों में आता हुआ दिखाई देता है कविता।
2: शरद पूर्णिमा के चांद का भारतीय साहित्य और परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में छिपे इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर निशा नाग पुरोहित को।
5: शरद चांदनी मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। यह जीवन केवल वही जीवन नहीं है जो इस लोक में बिताया गया है। शरद चांदनी का महत्व आध्यात्मिक भी है।

0: इस अध्यात्म में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण रूपी परमात्मा, गोपिकाएं रूपी आत्माएं और उन सब का मिलजुल कर होने वाला नृत्य अर्थात शरद चांदनी का यह सुंदर उत्सव बहुत आगे तक आध्यात्मिकता को छू लेने वाला है। मणिपुरी रास लीला में शरदोत्सव का या शरद रास का विशेष महत्व है। आगे अपनी कविता में लिखते हैं, शरद चांदनी बरस रही है, अंजुली भर पी लो, तुम भी क्षण क्षण जी लो। शरद ऋतु यही तो वो है जिसकी कवियों ने, लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है।
1: सदियां बीत गईं, दौर बदल गए, लेकिन चांद को निहारने और उसे शब्दों में पिरोने का सिलसिला आज भी जारी है। कभी वो प्रेम का प्रतीक बनता है तो कभी विरह और स्मृतियों का।
2: ये चांद है जो हर दौर में कवियों की कल्पना को रोशनी देता रहा है और आज भी कविताओं में अपनी जगह बनाए हुए है।
1: काव्य वाचन स्वर सौम्या वाजपेयी, छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं हूँ प्रांजल।
3: चांद कविताओं का हम सफर। अभी आपने सुनी ये विशेष लघु प्रस्तुति। ऋतुओं के बदलते रंगों के बीच जब हवाओं में त्योहारों की आहट और मौसम में गुलाबी सी ठंड घुलने लगती है तो ये महीना अपने साथ केवल ऋतु परिवर्तन की ही अनुभूति नहीं लाता बल्कि साहित्य की उन अमर स्मृतियों को भी हमारे सामने लाता है जिनकी आभा समय बीतने के साथ और गहरी होती जाती है। वो नाम हमारी भाषा में होते हैं, हमारी स्मृतियों में होते हैं और कभी कभी हमारे अपने अनुभवों में भी। सबसे पहले स्मरण कथा सम्राट प्रेमचंद का, जिन्होंने साहित्य को गांव, खेत और आम जीवन की धड़कनों से जोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने कविता को रूढ़ बंधनों से मुक्त कर उनमें स्वाधीन चेतना, विद्रोह और करुणा के स्वर भरे। श्रीलाल शुक्ल, जिन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से समाज की विरूप विसंगतियों को सामने रखा। भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के भीतर के द्वंद और जीवन के जटिल प्रश्नों को स्वर दिया। आधुनिक हिंदी कहानी और वैचारिक बहस को नया तेवर देने वाले पुरोधा राजेंद्र यादव। असरार उल हक मजाज, जिनकी शायरी में रूमानी संवेदना के साथ अपने समय की बेचैनी भी दर्ज है। तन्हा दिलों और संघर्षशील इंसानों के पक्ष में बेबाक और खूबसूरत गीत लिखने वाले साहिर लुधियानवी और अपनी सादगी भरी जुबान से जिंदगी के फलसफे को आम आदमी तक पहुंचाने वाले नायाब रचनाकार निदा फाजली। इन सभी साहित्यिक विभूतियों की स्मृति और उनके अमूल्य साहित्यिक अवदान को नमन करते हुए साहित्य भारती का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी

0: स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत, और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया, और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप हिज हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's chase got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
0: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था वो। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई गेंद के साथ, बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया, लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल

0: 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruoning, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दांव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानो को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदल कर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल बोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया।

फाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के

0: आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6वें स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6वें स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इंडियन वुमेन डिफीटेड सिंगापुर फॉर द 5th to 8th प्लेसिंग 22-5। इंडिया वन द फर्स्ट हाफ कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली बाय डिफीटिंग सिंगापुर 17-5 एंड ऑल्सो ओन्ड द सेकंड हाफ बाय कम्प्लीटली डिमोलिशिंग सिंगापुर 5-0, thereby विनिंग द मैच इन स्ट्रेट गेम्स 2-0। द इंडियन वुमेन्स मैच इन रग्बी सेवन्स फॉर द 5th-6th प्लेसिंग लेटर हैपेंड विद कजाकिस्तान, इन विच कजाकिस्तान easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0. And finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड India's campaign in the sport ended with this loss.
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
4: इन सेलिंग 16-year-old माही वर्मा फिनिश 6th overall इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कॉम्पिटिशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12-race ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
4: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
4: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। ऑफ द 310 एथलीट्स मेकिंग देयर एशियन गेम्स डेब्यू, 83 हैव वन मेडल्स, 43 वुमेन एंड 40 मेन। दैट मींस मोर देन 1 in every 4 इंडियन डेब्यूटेंट हैज रिटर्न्ड विद अ मेडल। बिटवीन देम दीज फर्स्ट टाइमर्स हैव कंट्रीब्यूटेड 41 मेडल्स अक्रॉस 12 स्पोर्ट्स, 14 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 15 bronze, and several performances have broken new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kilogram category. Jemina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record.

0: Caught in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन यूएस डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mr. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the four labour codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
4: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gopalak Sammelan in Bhopal today. In Andhra Pradesh, 4 workers were killed and another was critically injured in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City of Satyavedu Mandal today. The blast occurred inside a factory in the special economic zone. 2 workers died on the spot while 3 others were critically injured and shifted to a nearby hospital. 2 of the injured later succumbed to their injuries during treatment. The remaining worker is undergoing treatment in the intensive care unit. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed shock over the incident. India won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, captain Harmanpreet Singh netted 2 goals while Jugraj, Hardik and Shailanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57kg gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Tanvi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53kg category. Deepak Punia won bronze in the men's 97kg freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganghuya Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India has climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said that this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said, "The 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey." He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister also congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. Mr. Modi also congratulated Kumkum Anil Mohod on becoming the first Indian woman to win recurve individual gold at the 2026 Asian Games. Prime Minister also congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57kg freestyle wrestling event. Mr. Modi expressed happiness that 6 decades later, India is back on the podium in the men's 97kg freestyle wrestling event at the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.
5: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িত প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভ। এখন শুরু হচ্ছে হিন্দি ছবির গানের অনুষ্ঠান। আজকের প্রথম ছবি সিতারা। সিতারা ছবির থেকে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বিভিন্ন গান। প্রথমে আশা ভোঁসলে